0: और जो माल तुमको अल्लाह ने अता फरमाया है उससे आखिरत की भलाई तलब कीजिए और दुनिया से अपना हिस्सा न भुलाइए, और जैसी अल्लाह ने तुमसे भलाई की है वैसी तुम भी लोगों से भलाई करो, और मुल्क में तालिब फसाद न हो, क्योंकि अल्लाह फसाद करने वालों को दोस्त नहीं रखता। वो बोला कि ये माल मुझे मेरे एक हुनर के सबब मिला है, क्या उसको मालूम नहीं था कि अल्लाह ने उससे पहले बहुत सी उम्मतें जो उससे कुव्वत में बढ़कर और जमीयत में बेशतर थीं हलाक कर डाली थीं, और गुनाहगारों से उनके गुनाहों के बारे में पूछा नहीं जाएगा। तो एक रोज कारून बड़ी आराइश और ठाट से अपनी कौम के सामने निकला। जो लोग दुनिया की जिंदगी के तालिब थे कहने लगे कि जैसा मालूमता कारून को मिला है काश ऐसा ही हमें भी मिले, वो तो बड़े नसीब वाला है।
1: وقال الذين أوتوا العلم

0: ही आहे सिंध जी दिल। ये मटियारे एफएम 91.6 जो आवाज।
1: ओ मुझे मस्त मलंग ही मारू डुंगर खां भी डाढा नियर नहीं का चीज न आहे सकी कड़ो नहीं।

0: हर पहर GFH नेटवर्क सिंध की आवाज।
1: अल्लाह आप सलाह आपकी नामुस सलामत पहरा देंगे। हम उर्मते रसूल के मुहाफिज है या रसूल अल्लाह। हम अपनी अजवाज को छोड़ सकते हैं, अपनी औलाद भूल सकते हैं, लेकिन आप

0: सर मोमिनी जे वजीर आजम शहबाज शरीफ ए फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर से धारदार मुलाकात। वजीर आजम शहबाज शरीफ पारा गणती जो इजहार। वजीर आजम शहबाज शरीफ जो चवण हो त धुरियूं अड़ा कदम खणन का पासो कन जेके खिते में वधिक अदम इस्तेकाम जो सबब बणजन। पाकिस्तान एक दयानतदार मुखलिस सालिस सहूलतकार तौर पैंजे किरदार जारी रखंदो। इस्कंदर मोमिनी ईरानी क्यादत तरफा वजीर आजम लाए नेक ख्वाहिशन ए खैर सगाली वारो पैगाम पहुंचायो। वजीर आजम नायब आजम फील्ड मार्शल जी टेकियाड़ी वारन कोशिशन जी सारा। इस्कंदर मोमिनी चयो त पाकिस्तानी क्यादत जे कोशिशन सां इस्लामाबाद मुफाहमती यादाश्त नामो तय थियो। फील्ड मार्शल ए ईरानी घरू वजीर जी मुलाकात दौरान बे इलाकाई बतरफी सिक्योरिटी सूरत हाल ए सरहदी इंतजाम में वधीक असरायतो बढ़ाइण ते ख्यालन जी डे वठ। ISPR मूजिब इस्कंदर मोमिनी पाकिस्तान सिफारती कोशिशन खे साराहींदे चयो त पाकिस्तान खे अहम करे रहियो आहे। अमेरिकी अखबार मूजिब मुहाजी भाईवारी अमेरिकी कांग्रेस के सामू पेश। पेट्रोल 94 पैसा महंगो, डीजल 17 पैसा इजाफो, ओगरा नोटिफिकेशन जारी कर छो। पेट्रोल जो नव अग 320 रूपया 73 पैसा, डीजल जो नव अग 367 रूपया 21 पैसा फी लीटर मुकरर। ओगरा नोटिफिकेशन मूजिब एक लीटर पेट्रोल ते 85 रूपया, डीजल ते तकरीबन 75 रूपया लेवी आहे। आल पाकिस्तान पेट्रोल पंप्स एसोसिएशन जो अज सजे मुल्क में हड़ताल जो ऐलान। पेट्रोल पंप्स एसोसिएशन अगवान नोमान अली भट्ट चयो आहे त रोजानो जी बुनियाद ते पेट्रोलियम शयुनि जे कीमतनि में तब्दीली कंहिं बि सूरत में क़बूल न आहे। हुकूमत सां ॻाल्हियूं नाकाम थी वियूं आहिनि। क़ीमतूं माहवार बुनियादनि ते तय कयूं वञनि। अॼु राति 12 वॻे खां सॼे मुल्क में पेट्रोल पंप्स बंदि कया वेंदा। वज़ीर आज़म कोआर्डिनेटर इख़्तियार वली जो चवण आहे त पेट्रोल पंप्स मालिकनि खे ॻाल्हियुनि लाइ घुरायो आहे, मामला तय थी वेंदा। जलालपुर कैनाल ते असांजा एतराज़ बरक़रार आहिनि। गॾियल मुफ़ादनि वारे काउंसिल में बि वयल आहियूं। सिंध खे सदाई हिसे खां घटि पाणी मिलियो आहे। टेलीमेंट्री सिस्टम एरसा जे तरीक़े ते केतिराई भेरा एतराज़ वारिया आहिनि। कराची में ॻाल्हाईंदे वॾे वज़ीर सैद मुराद अली शाह चयो आहे त पाणी बाबति टास्क फोर्स आबी मुआहिदनि जो जाइज़ो वठी हिकमत अमली जोड़ींदी। वॾे वज़ीर मुराद अली शाह जे भान सैदाबाद आमद मीडिया सां ॻाल्हाईंदे चयो त प्रिया समेत गुम थियल ॿारनि वारे मामले खे घरू वज़ीर ॾिसी रहियो आहे। पंजाब जे मुख़्तलिफ़ शहरनि में बरसात तबाही। मुख़्तलिफ़ हादसनि में 13 ॼणा फौत। गुजरांवाला कामुकी पाक कप्तन ऐं साहिवाल में छतियूं किरण सबब 7 ॼणा फौत। कोट अदो में कामुकी में ॿुॾी वञण जे वाकियनि में 2 ॼणा हयातियूं विञाए वेठा। लाहौर रायवन गुजरांवाला ऐं पाक पतन में करंट लॻण जे वाकियनि में 4 ॼणनि दम रस्ता घिटियूं ऐं बाज़ारूं तलाउनि जो लेख ॾियण लॻियूं।
1: के हो तो मटिया हो GAFM 91.6।
2: यार कुछ डीन खा चेल जो सूर जोड़न जी तकलीफ असाबी दर्द एतरो वधी वियो आहे जो हलन फिरन भी दुखियो लगे थो।
3: तो पोए तू फकीरी डेक्स ऑइंटमेंट इस्तेमाल छो नथो करी?
2: इहा वाकई फायदे वारी आहे छा?
3: बिल्कुल, फकीरी डेक्स मरम मुतासिर थियल हंध ते आसानी सां जज़ब थी सूर ऐं सोडियम मां आराम पहुचाइण में मदद ॾिए थी।
2: सिर्फ़ चेल ऐं सूर लाइ
3: न दा, असाबनि जो सूर, जोड़न जो सूर, कंध ऐं चेल जी तकलीफ़, सट, धक लॻण, पुराणनि ज़ख़्मनि जे सूर ऐं चमड़ीअ जे जलन लाइ बि फ़ाइदेमंद आहे।
2: इस्तेमाल कीअं कजे?
3: मुतासिर थियल हंध ते ॾींहं में 2-3 भेरा नरमी सां लॻायो ऐं आराम जो अहसास हासिल करियो। जी हा, फकीरी डेक्स ऑइंटमेंट, सूर खां आराम, हर रोज हर कदम। अॼु वेझे स्टोर तां नालो वठी ख़रीद करियो फकीरी डेक्स ऑइंटमेंट।
4: हक सच जो आवाज़, गीत संगीत जो आवाज़, जीए हैदराबाद मटियारी FM 91.6, सिंध जो आवाज़, ॿुधंदा रहो।
5: तालीमुल कुरान, कुरान मजीद के लफ्ज़ी तर्जुमा और

परदेसन सा दिल लगी केती बेवसारी पेश इकरा परदेसी प्यारी दादा जिसा पचन जी गति कोने उनन साई दिल्ली वनी फाती की लगी दिल बेवस

0: Calendar Mars. Er war hier.
1: गीत संगीत जो आवाज जे सिंध जो आवाज उधंदा रहो उधंदा रहो.
2: It's 9:30 AM. This time check is
3: माने सो सारी टेंशन्स जब हो आपके पास Zong 4G.
4: क्या आप जोड़ों के दर्द, पट्ठों के खिंचाव, कमर दर्द या सूजन से परेशान हैं?
5: फकीरी मरहम बनाने वालों की फखरिया पेशकश फकीर
4: कुदरती अज्जा
5: ये मुआसर क्रीम मुतासरा जगह पर तेजी से जज्ब होकर
4: दर्द और सोजिश से आराम पहुंचाती है.
5: रोजमर्रा के जिस्मानी दर्द,
4: वर्जिश के बाद होने वाली तकलीफ,
5: गर्दन और कंधों के दर्द
4: और पट्ठों की अकड़न के लिए बेहतरीन इंतखाब.
5: सिर्फ मुतासरा जगह पर दिन में 3 से 4 मर्तबा नरमी से लगाएं और सुकून का एहसास पाएं.
4: उम्रा और हज पर जाने वाले हजरात फकीरी एनल्जेसिक क्रीम को अपने हमरा रखें.
5: फकीरी एनल्जेसिक क्रीम, दर्द, सूजन, वरम फौरी खत्म. आज ही करीबी स्टोर से नाम लेकर तलब.
6: बेरोनक लगी पेंजी पेश आहे वाइट एज ब्यूटी क्रीम. अवहां जी स्किन के बनाए फ्रेश, सॉफ्ट एंड ग्लोइंग. अवहां के रेडिएंट लुक रोजानो जे इस्तेमाल सा हर किस्म जी परफेक्ट हाने थियन वधिका जेका.

0: यार कुछ ॾींहनि खां चेल जो सूर, जोड़नि जी तकलीफ़ ऐं असाबी दर्द एतिरो वधी वियो आहे जो हलण फिरण बि ॾुखियो लॻे थो।
1: त पोइ तूं फ़क़ीरी डेक्स ऑइंटमेंट इस्तेमाल छो नथो करीं?
0: इहा वाकई फ़ाइदे वारी आहे छा?
1: बिल्कुल, फ़क़ीरी डेक्स मरहम मुतासिर थियल हंध ते आसानी सां जज़्ब थी सूर ऐं सोडियम मां आराम पहुचाइण में मदद ॾिए थी।
0: सिर्फ़ चेल ऐं सूर लाइ
1: न दा, असाबनि जो सूर, जोड़नि जो सूर, कंध ऐं चेल जी तकलीफ़, सट, पुराणनि ज़ख़्मनि जे सूर ऐं चमड़ीअ जे जलन लाइ बि फ़ाइदेमंद आहे।
0: इस्तेमाल कीअं कजे?
1: मुतासिर थियल हंध ते ॾींहं में 2-3 भेरा नरमी सां लॻायो ऐं आराम जो अहसासु हासिल करियो। जी हा, फ़क़ीरी डेक्स ऑइंटमेंट, सूर खां आराम, हर रोज हर कदम। अॼु वेझे स्टोर तां नालो वठी ख़रीद करियो, फ़क़ीरी डेक्स ऑइंटमेंट।
2: हक़ सच जो आवाज़, गीत संगीत जो आवाज़।

lots of fun, loads of mystery. Only on G Radio 98. जी साईं, मुंहिंजा प्रोग्राम रोशन सुबह में वापसि अची चुका आहियूं ऐं मां तव्हांखे सवाल नोट करायो आहे। तमामु आसान सवाल आहे ऐं तव्हांजी ख़्वाहिश हमेशा इहा हूंदी आहे त असांखे सवाल आसान ॾियो ऐं ॾुखिया ॾुखिया सवाल आहिनि, ॾुखियूं ॾुखियूं गुज़ारतूं आहिनि। तमामु असांजो आसान सवाल आहे त जेकॾहिं पाण खाई वञूं त हलाल आहे, न खाऊं त उहा हराम आहे। इहा असांजो हिकिड़ो सवाल आहे, गुज़ारत आहे, ॾिठ आहे। तव्हां असांखे नोट कराए सघो था, असांखे हिन सवाल जो गुजरात जो सही जवाब असांखे मोकिले सघो था। मां तव्हांखे बार बार नोट करायां थो त असांजे मोबाइल जे राइट ऑप्शन में यानी SMS ज़रिए तव्हां असांखे सवाल जो सही जवाब मोकिले सघो था। मोबाइल जे राइट ऑप्शन में वेंदो, उते LRK लिखी स्पेस ॾींदो, बाद में तव्हां पंहिंजो नालो, ॻोठ ऐं नालो ऐं सवाल जो सही जवाब लिखी करे 888 ते तव्हां असांखे सेंड करे सघो था। ऐं GFM88 जी जेका ID आहे, तव्हां फेसबुक ते बि तव्हां असांजे सवाल जो सही जवाब मोकिले सघो था। ऐं असांजे स्टूडियो में आन आहे, तव्हां असांजे कॉल करे पंहिंजा नाला, पंहिंजे सवाल जो सही जवाब लिखाए सघो था। असांजो नंबर आहे 0332132288। साईं, मुंहिंजा ॿाहिरनि मुल्कनि में पुराणे दौर में कुझु अहिड़ियूं पंहिंजो इदारा आहिनि जिते पंहिंजे वॾी उमिरि वारा माण्हू, पोइ हुन में मर्द हुजे माई हुजे, ओल्ड एज जेके होम आहिनि, जेके उहे घर आहिनि, उते ठाहिया वेंदा हुआ। पर अफ़सोस सां चवणो पए थो त अॼु पंहिंजी सुहिणी सिंध में बि साॻिया रवाज थ्रू शुरू थी चुका आहिनि। हिते बि कुराड़ा माण्हू महफ़ूज़ ऐं ख़ुशि न आहिनि। दुख जहिड़ी ॻाल्हि आहे। हीअं अॻे पाण ॿुधंदा हुआसीं वाकी त ॿाहिरनि मुल्कनि में पोढ़नि माण्हुनि लाइ रहण लाइ क़ाइमु कया विया आहिनि अलॻि इदारा,

जंहिंखे असां हिकिड़ा कैद खाना बि चई सघूं था। उमिरि वारनि माण्हुनि खे खुलियल फिज़ा खपे, नंढा मजबू आहिनि जिते पोड़ा माण्हू पोटनि ॾोहटनि ॾोहटनि नुंहं ऐं पंहिंजो पुटनि सां हुनखे जेको आहे सो रहणु घुर्जे, पर अफ़सोस सां जो हुननि खे जेको आहे सो हथ सां घरनि मां कढियो वञे थो। तमामु ॾुख जी ॻाल्हि आहे जिन जी सार संभाल रहण लाइ और जेके ओल्ड एज होम आहिनि जेके उते रखियल हूंदा आहिनि, गवर्नमेंट जा इदारा बि आहिनि, प्राइवेट इदारा बि आहिनि, उते फीमेल नर्सूं हुकूमत तरफ़ां मुक़रर थियल हूंदियूं आहिनि ऐं हिन मिर में त हुननि खे नंढे ॿार वांगुरु प्यार मोहबत ऐं तवज जी ज़रूरत हूंदी आहे। अहिड़नि सेंटरनि खे ॿाहिरनि मुल्कनि में ओल्ड मैन हाउसिस सॾियो वञे थो, पर हाणे इहो सभु कुझु आऊं पंहिंजे अखियुनि सां ॾिसूं था, पाण ॿुधूं था त असांजे सिंध जे बहराड़ी में बि पोड़नि वालदेन लाइ घर सोढ़ा थी विया आहिनि। उते खुलियल अंगण वारा वॾा घर बि सोढ़ा आहिनि, जॻह नाहे, ऐं उन्हनि वालदेन लाइ उन अमण लाइ जिन औलाद खे ताते पाले वॾो कयो, अॼु उहा ई औलाद पंहिंजे पोड़नि वालदेन खे पीरनि ते दरगाहनि ते छॾे अचनि था। ऐं छा थियो आहे असांजे पंहिंजे मुआशिरे खे, असांजे मुआशिरे खे पुटनि जूं मारूं लाहवारस हुजनि ऐं पीर दरगाहनि असांजा ओल्ड मैन हाउसिस हुजनि ऐं उते वञी पंहिंजे पोचे जागत जी ॻाल्हि इहा आहे टियों ॾींहुं पंहिंजी अखियुनि सां माण्हू वठी करे पंहिंजी फैमिली खे पकड़े करे कर वियो कराची पिकियो, पर पंहिंजी कुराड़ी में चाढ़े ऐं चए सो फलाणे रक्षे वारो उते ॾिसी करे हुन जो दरु ई न आहे का बि जॻह कोसां दुख जहिड़ी ॻाल्हि अखियुनि मां वारी ॻाल्हि त उते पियो रक्षे वारो त हुन खे को पंहिंजे ऐं हू छा चइजे वधीक के लफ़्ज़ कोन। हीउ गीत अव्हां जे नाम पिया कयूं।

जी साईं, मुंहिंजा असांजी गुज़ारत तमामु आसान आहे। प्रोग्राम रोशन सुबुह में ऐं रोशन सुबुह प्रोग्राम मां ॿुधो पिया जी एफ एम 88 जे नेटवर्क तां, त असांजी गुज़ारत आहे त जेकॾहिं खाई वञो त हलाल आहे, जेकॾहिं न खाओ त उहा हराम आहे। इहो सवाल तमामु आसान आहे, तव्हां असां ॾे सेंड करे सघो था। जेके दोस्त प्रोग्राम हींअर ॿुधनि पिया या जंहिं बि पंहिंजो रेडियो सेट हाणे आन कयो आहे, त उन्हनि नवनि दोस्तनि खे असां पंहिंजे प्रोग्राम में शामिल थियण लाइ पंहिंजो जेको आहे सो ॾस पतो ॿुधाईंदासीं। त मोबाइल जे राइट ऑप्शन में वेंदो, उते एल आर के लिखी तव्हां स्पेस ॾींदव, पंहिंजो नालो, पंहिंजे ॻोठ जो नालो ऐं सवाल जो सही जवाब तव्हां असां ॾे सेंड कंदव 888 ते। जेके दोस्त प्रोग्राम फेसबुक ते ॿुधनि पिया, त फेसबुक जी असांजी आई डी आहे जी एफ एम 88 जी आई डी आहे, तव्हां उन ते असां ॾे सवाल जो सही जवाब मोकिले सघो था। ऐं असांजे मोबाइल नंबर जेको आहे, असांजी जेको सेल नंबर आहे, उहो स्टूडियो में आन आहे, तव्हां असां ॾे कॉल करे पंहिंजे सवाल जो सही, असांजो नंबर आहे 0332 1322 88।

0: अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप सऊदी अरब से एटमी वायदे की मंजूरी दे छी अमेरिकी अखबार वॉल स्ट्रीट एटमी तवानाई शोबे में डिक्टोरी सामू पेश कर वो
1: पेट्रोल 4.98 रूपया महंगो डीजल फी लीटर 7.15 रूपया इजाफो उगरा नोटिफिकेशन जारी कर पेट्रोल जो नव अघ 320.73 रूपया डीजल जो नव अघ 367 रूपया 1 लीटर उगरा नोटिफिकेशन मूजिब 1 लीटर पेट्रोल 85 रूपया डीजल तकरीबन 75 रूपया आहे।
0: ऑल पाकिस्तान पेट्रोल पंप्स एसोसिएशन जो अज सजे मुल्क में हड़ताल जो ऐलान पेट्रोल पंप्स एसोसिएशन अगवान नौमान अली भट्ट चवे तो रोजाना की बुनियाद से पेट्रोलियम शहर की कीमत में तब्दीली कें भी सूरत में कबूल ना है। हुकूमत से गालू नाकाम कीमतू माहवार बुनियाद तय तय कई वन अज रात 12 वगे का सजे मुल्क में पेट्रोल पंप्स बंद कया वा वजीर आजम के कोऑर्डिनेटर इख्तियार वली जो चवण है पेट्रोल पंप्स मालिकन के गालियों के लिए घुराया है।

0: da Tete e Vedá.
1: खिपरो में फुर्म जा मते कतल थियल भेरू कोहली जो लाश रखी धरणो गुजरियल ॾींहं खां जारी आहे। धरणे वारे हंधि न चूंडियल नुमाइंदो पहुतो न SSP हमीर फकीर वोट लगल धरणे में ॿार ऐं औरतूं समेत सिविल सोसाइटीअ जा माण्हू बेशरीक।

0: देखिए पागल खाना पीर से जुमेरात रात 9 बजे सिर्फ ग्रीन एंटरटेनमेंट पर।
1: हक सच जो आवाज, गीत संगीत जो आवाज, ये हैदराबाद मटियारी FM 91.6 सिंध जो आवाज, उधर ना रहो।

ऐं अवामी मर्द ते पंहिंजे लाइ मौज़ू बणाए छॾियो आहे। ॾिसो न त असां अॻे पाण कोयला खणी या कलम चाक खणी भितियुनि ते लिखंदा हुआसीं, हाणे अॼु उन्हनि भितियुनि ते साइन बोर्ड थी विया आहिनि, उते पेनाफ्लिक्स लॻनि पिया, उते कारोबारी मर्कज़नि जे हवाले सां उते हुनजी एडवर्टाइज़मेंट थिए थी, उनजी उते लिखजे थी त हीउ असांजो कारोबार आहे, ही असांजो जेको आहे सो स्कूल आहे, ही कॉलेज आहे, उते बिल्कुलु पेनाफ्लिक्स लॻाए करे उन्हनि चौकनि ते उन्हनि भितियुनि ते उहे लॻाए वञनि था। पर पहिरीं नंढपण में इहे पाण सां कोयलनि सां ऐं चाकनि सां लिखंदा हुआसीं। नंढपण जूं यादगिरियूं तमामु वॾियूं आहिनि ऐं उहे यादि ईंदियूं आहिनि त ज़हन इंसान जो उन तरफ़ हली वेंदो आहे।

जी साईं, मुंहिंजा असां गुज़ारत आहे, असां जेको सवा खाई वञो त न खाओ त हराम, त हलाल आहे नहीं खाए तो हराम है। साईं मुंहिंजा असांखे हिन सवाल जो सही जवाब अञा मोकिले सघो था, असांजे इनबॉक्स में तव्हां मोबाइल जे राइट ऑप्शन में वेंदव, उते लिखी स्पेस ॾींदव, उन बाद में तव्हां पंहिंजो नालो, पंहिंजे ॻोठ नालो, सवाल जो सही जवाब 888 ते तव्हां सेंड करे सघो था। प्रोग्राम फेसबुक ते ॿुधनि पिया, उन लाइ GFM88 जी आईडी आहे, त हुन ते बि असांखे सवाल जो सही जवाब मोकिले सघो था। ऐं असांजे स्टूडियो में मोबाइल आन आहे, कॉल करे पंहिंजो नालो लिखाए सघो था। सही जवाब असां 2288 जी हा 033221288 असां नंबर आहे। ऐं साईं जा कुझु दोस्त जा नाला बि खणंदा हलंदासीं, जिन असांखे सही जवाब मोकिलिया आहिनि, छो त गुजरात सवाल असांजो आसान हुयो। जी हा, समेन असांजे सवाल जो सही जवाब मोकिलियो ममताज तुनियो, सिराज अमन तुनियो, शहर मीरो खान खां, नज़ीर अहमद मंगरियो, रोहिड़ी सखर खां, ऐं सोरा भाजी सोरा मंगरियो, नज़र मोहम्मद मंगरियो, घोट सचेरणो मंगरियो लॻे बकापुर खां, ऐं इज़हार हुसैन शेख पुराणो सखर खां, अली गुल मीराणी बि सखर खां, ख़ालिक लाशारी ऐं इक़बाल लाशारी मीरपुर ख़ास खां, फ़क़ीर महरम जतोई आगा खान जतोई खां, लियाकत अली खकराणी मोहसिन अली अहसन अली काड़काणे खां, समीर लाइ रिंद नालो कोन लिखियो हो, ऐं यासमीन मलिक मीरपुर ख़ास खां, हाफ़िज़ नईम अलाए, हाफ़िज़ अमीन अलाए, हाफ़िज़ अहसान अलाए पनियागिल खां, फौजी पठाण खां, कासिम पांवर बि फुलजी स्टेशन खां प्रोग्राम ॿुधे पियो, भाउ जी वॾी महिरबानी, मुनीर अहमद जुणे जो ॻोठ ठुल जुणे जो खां, ऐं ग़ुलाम सरवर सुमरो ज़ाकिर सहतो ॻोठ लाड़काणो खां, हाफ़िज़ मोहम्मद हनीफ़ रिंद, सदाम हुसैन रिंद ॻोठ जबाद खां, फतेह मोहम्मद कनासरो, फराज़ अहमद, फारूक अहमद ऐं बेबी शगफ्ता नाज़ कनासरो ॻोठ

जी साईं, मुंहिंजा प्रोग्राम रोशन सुबुह जारी ऐं सारी आहे। तव्हांजो असांजो साथ रहंदो ठीकु यारहें वॻे ताईं। अव्हां जा नाला लिखूं पिया, अव्हां जा सवाल जा जवाब लिखूं पिया, कॾहिं बि न वञिजो। वरी वापसि ईंदासीं, हलूं पिया हिन वक़्तु कमर्शियल ब्रेक जी तरफ़।

0: हक सच जो आवाज, गीत संगीत जो आवाज, ये हैदराबाद मटियारी FM 91.6 सिंध जो आवाज, बुदंदा रहो।
1: It's 10:30 AM. This time check is brought to you by
2: Heme Diamond Glow Bleach Cream, जो deep clean करे और दे चार गुना brightness, चमक ऐसी diamond skin जैसी। Heme Diamond Glow Bleach Cream.
3: यार कुछ ॾींहनि खां चेल जो सूर, जोड़नि जी तकलीफ़ ऐं असाबी दर्द एतिरो वधी वियो आहे जो हलण फिरण बि ॾुखियो लॻे थो।
4: त पोइ तूं फ़क़ीरी डेक्स ऑइंटमेंट इस्तेमाल छो नथो करीं?
3: इहा वाक़ई फ़ाइदे वारी आहे छा?
4: बिल्कुल, फ़क़ीरी डेक्स मरम मुतासिर थियल हंध ते आसानी सां जज़्ब थी सूर ऐं सोडियम मां आराम पहुचाइण में मदद ॾिए थी।
3: सिर्फ़ चेल ऐं सूर लाइ
4: न दा, असाबनि जो सूर, जोड़न जो सूर, कंध ऐं चेल जी तकलीफ़, सट, धक लॻण, पुराणनि ज़ख़्मनि जे सूर ऐं चमड़ीअ जे जलन लाइ बि फ़ाइदेमंद आहे।
3: इस्तेमाल कीअं कजे?
4: मुतासिर थियल हंध ते ॾींहं में 2-3 भेरा नरमी सां लॻायो ऐं आराम जो अहसास हासिल करियो। जी हा, फ़क़ीरी डेक्स ऑइंटमेंट, सूर खां आराम, हर रोज हर कदम। अॼु ई वेझे स्टोर तां नालो वठी ख़रीद करियो फ़क़ीरी डेक्स ऑइंटमेंट।
5: ख़ूबसूरतीअ जो असल राज सिर्फ डी स्किन ब्यूटी क्रीम। हिन में मौजूद विटामिन ई बीड्स ऐं जदीद माइक्रो बीड्स फार्मूलो अव्हां जी स्किन खे बणाए निखरी ऐं चमकदार सिर्फ 2 ॾींहनि में। डार्क स्पॉट्स खे करे खत्म ऐं लिए कुदरती असली ग्लो। डी स्किन ब्यूटी क्रीम, असली ग्लो हर ॾींहं जो शो। अ प्रोडक्ट बाय बायोकॉन इंटरनेशनल पाकिस्तान।

0: देखिए रंग महल रोजाना रात 9 बजे सिर्फ जियो पर। हक सच जो आवाज, गीत संगीत जो आवाज, ये हैदराबाद मटियारी सिंध जो दंदा रहो।
1: यार कुछ डियन खा चेल जो सूर जोड़ दर्द इतरो वधी वियो आहे जो हलन फिरन भी दुखियो लगे थो।
2: त पोए तू फकीरी डेक्स ऑइंटमेंट इस्तेमाल छो न तो करी?
1: इहा वाक्य छा।
2: बिल्कुल, फकीरी डेक्स मरम मुतासिर थियल हंध ते आसानी सा जज़ब थी सूर आए सोडियम आराम पहुँचाण में मदद दे थी।
1: सिर्फ चेल ही सूर लाए
2: न दा, असाबन जो सूर, जोड़न जो सूर, चेल जी तकलीफ।

0: ये सूर ऐं चमड़ीअ जे जलन लाइ बि फ़ाइदेमंद आहे।
1: इस्तेमाल कीअं कजे?
0: मुतासिर थियल हंध ते ॾींहं में 2 खां 3 भेरा नरमी सां लॻायो ऐं आराम जो अहसासु हासिल करियो। जी हाँ, फ़क़ीरी डेक्स ऑइंटमेंट, सूर खां आराम, हर रोज हर कदम। अॼु वेझे स्टोर तां नालो वठी ख़रीद करियो, फ़क़ीरी डेक्स ऑइंटमेंट।
2: खूबसूरतीअ जो असल राज सिर्फ डी स्किन ब्यूटी क्रीम। हिन में मौजूद विटामिन ई बीड्स ऐं जदीद माइक्रो बीड्स फार्मूलो अव्हां जी स्किन खे बणाए निखरी ऐं चमकदार सिर्फ 2 ॾींहनि में। डार्क स्पॉट्स खे करे खत्म ऐं ॾिए कुदरती असली ग्लो। डी स्किन ब्यूटी क्रीम, असली ग्लो हर ॾींहं जो शो। अ प्रोडक्ट बाय बायोकॉन इंटरनेशनल पाकिस्तान।
3: हक सच जो आवाज, गीत संगीत जो आवाज, जीए हैदराबाद मटियारी FM 91.6 सिंध जो आवाज, बुधंदा रहो।

0: खारिश और बदबू को कम करने में मदद देता है। फकीरी नीम प्रिकली हीट सॉप।
1: हर अच्छे स्टोर से नाम लेकर तलब कीजिए।
2: मोरो
3: नौशहरों

जी साईं मुंहिंजा, असांजे हिन हफ़्ते जी गुज़ारत, हिन हफ़्ते जो जेको सवाल हो त खाऊं त हलाल, न खाऊं त हराम, बिल्कुलु हिन जो सही जवाबु आहे कावड़ गुस्सो। ऐं जेको माण्हू कावड़ कंदो आहे, गुस्सो कंदो आहे, त उहो हराम आहे, पर जेकॾहिं हुन खे खाई वेंदो त उहा हलाल आहे। काफ़ी दोस्तनि जा सही जवाब आया हिन दफ़े। असां सभिनी खे मुबारक ॾींदासीं, जस ॾींदासीं, त शाबस आहे दोस्तनि। काफ़ी जेको आहे सो तक़रीबन सभिनी सवालनि जा सही जवाब न, पर हिकु अधु दोस्त आहिनि बसि हुनखे हुन कुणे में खणूं था जिन सवाल सही जवाब न ॾिनो आहे। त असांजा दोस्त आहिनि असगर अली शंबाणी, मुजाहिद अली शंबाणी ऐं अब्दुल लतीफ़ शंबाणी, राजा मुज़फ़र शंबाणी, ॻोठ दादन खान शंबाणी मीरापुर खां, ऐं मोहम्मद शरीफ़ छुटो दरे जी बलोचिस्तान खां, भाइरनि जी वॾी महिरबानी। ऐं ॻोठ मोलिर नोमाशी लॻे वॾनि मरण खां, ज़मीर हुसैन सोलंगी, मुख़्तियार अली सोलंगी, ज़हीर अब्बास सोलंगी, नंढड़ो वफ़ा हुसैन सोलंगी, ॻोठ कंगन खां गुलाब खान कुंभर, शोएब अली ऐं गुलाम रसूल कुंभर, ॻोठ हसू जतोन खां मोहम्मद मूसा जतोई, यार मोहम्मद नसरुल्ला जतोई, ॻोठ मोहम्मद कासिम चांडियो खां अली अकबर चांडियो, मोहसिन अकबर चांडियो, अहसन अकबर, फहद अकबर ऐं अहद अकबर, शादाब चांडियो, ऐं ॻोठ छुटो मक्सी लॻे कंगन खां, सिकंदर अली मक्सी, अकबर खान मक्सी, नारा स्टाफ सखर लॻे सब्ज़ी मंडीअ खां, एजाज़ अली जूणे जो, मुनीब रहमान ऐं मुजीब रहमान जूणे जो, यारमंद कलोड़ा कॉलोनी लाड़काणे खां, इरशाद अली महेसर, फ़क़ीर एजाज़ अली कलोड़ो, डॉक्टर रिज़वान अली कलोड़ो, माजिद अली जतोई ऐं निसार अहमद जतोई। ऐं दोस्त आहिनि चने साईं खे बि हिन बि सवाल जो गारी लाल लट खां, इन दोस्तनि में जवाब बि सही जवाब कली नवाब शाह ऐं कुर्बान अली कमरी मच्छी मत हिला नख सोलंगी हाफिज़ लाड़काणे मीरपुर ख़ास खां, मोहम्मद खान कुंभार ऐं मोहम्मद अली भाइरनि जी वॾी महिरबानी, लख कुर्ब। ऐं आख़िरी कलाम सभिनी दोस्तनि जो

जी साईं मुंहिंजा हुमे रचना जे इन ख़ूबसूरत कलाम ते प्रोग्राम रोशन सुबुह जो वक़्तु पहुची पियो पंहिंजे भुॼाणी ते हयाती रही त इनशाह वरी अव्हां सां मुलाक़ात ज़रूरु थींदी तेसीं ताईं पंहिंजे मेज़बान नेमतुल्लाह जूणे जो ॾींदा इजाज़त अलाह निकाबा।

0: अपना शहर अपना घर मठियारी और मठियारी की आवाज
1: GFM 91.6।
2: It's 11 AM. This time check is brought to you by
3: Al Habib Current Plus Account. Bharosa bhi, raftar bhi. Bank Al Habib. Rishta bharose ka.
4: Ab aap sunenge.
5: Te maujoodilar nizam ke bhi nishano banaye hue ho jahariyat kandran ke saza den laye operation jari hai. अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप सऊदी अरब दे जी मंजूरी दई छड़ी। अमेरिकी अखबार वॉल स्ट्रीट जर्नल जी दावा, अमेरिकी अखबार मौजूद मुहिदे तहत सिविल सोसाइटी तवानाई शोबे में डिगे भाईवारी कायम कई वेंदी। मुहिदो मंजूरी ए जायजे लाइ अमेरिकी कांग्रेस के सामू पेश कयो वेंदो। आल पाकिस्तान पंप्स एसोसिएशन जो अज सजे मुल्क में हड़ताल जो ऐलान। पेट्रोल पंप्स एसोसिएशन अगवान नोमान अली भट्ट चयो आहे त रोजानो जी बुनियाद ते पेट्रोलियम शयन जे कीमतन में तब्दीली कंहिं भी सूरत में कबूल नाहे। असां ॻाल्हियूं नाकाम थी वयूं आहिनि, कीमतूं माहवार बुनियादन ते तय कयूं वञनि। अॼु राति 12 वॻे खां सॼे मुल्क में पेट्रोल पंप्स बंदि कया वेंदा। वज़ीर आज़म जे कोआर्डीनेटर इख़्तियार वली जो चवणु आहे त पेट्रोल पंप्स मालिकनि खे ॻाल्हियुनि लाइ घुरायो आहे, मामला तय थी वेंदा। केपीके में बरसात तबाही मचाए छॾी, 14 ॼणा फोत, 19 ज़ख़्मी। पीडीए में मौजूद 19 जुलाई खां जारी बरसात ने फ्लैश फील्ड जे नतीजे में 11 मर्द, 4 औरतूं ऐं 4 ॿार हयातियूं विञाए वेठा। बरसातनि सबबि 28 घरनि खे नुक़सान पहुतो, 22 घर जुज़वी तौर तबाह थिया। सखर जे साइट एरिया थाने जी हद में मुड़ुस ज़ाल खे घुटा ॾेई क़तल करे छॾियो। लेबर कॉलोनी फ्लैट्स में जवाबदार गुलाम शबीर शेख शबाना शेख क़तल करे फरार थी वियो। पुलिस जो चवणु आहे त जवाबदार ज़ाल खे घरू मामले तां घुटा ॾेई क़तल करे फरार थी वियो। गिरफ़्तारीअ लाइ छापा हया पिया वञनि। किदामत ते क़तल थियल भेरू कोलीअ जो लाश रखी लॻल धरणे वारो नुमाइंदो पहुतो न। SSP हमीर फ़क़ीर वटि लॻल धरणे सिविल सोसाइटीअ जा माण्हू बे शरीक। बोह जे वापारियुनि पारां पुलिस ख़िलाफ़ सॼे सिंध में 3 ॾींहं बि हड़ताल। कराचीअ में बोह जे शदीद खोट थी वई। मलीर में वापारियुनि जो एहतजाज। मुज़ाहिरनि चयो त पुलिस कारोबार करण बि नथी ॾे। हिकु हिकु चौकीअ ते 5 खां 10 हज़ार रिश्वत वरिती पई वञे ऐं तशदुद बि कयो वञे थो। कराची पहुचण ताईं हिकु गाॾीअ जे मालिक खे 50,000 रिश्वत ॾियणी पवंदी आहे। वधीक तंग कयो वियो त नेशनल हाईवे ते धरणो हयो वेंदो। KTN न्यूज़ ऐं कावश पारां हिकु वण सिंध अमर जे नाव जे उनवान सां भरपूर मुहिम शुरू करण जो ऐलान। 24 खां 31 जुलाई 2026 ताईं वण पोखण वारी मुहिम भरपूर नमूने सां हलाई वेंदी। मुहिम दौरान पंहिंजे घर, घिटी, पाड़े, शहर, पार्कनि ऐं मुख़्तलिफ़ हंधनि ते पंहिंजे हिसे जो बूटो पोखे

0: वचन दमण खे तोहफो ॾेई सघजे थो। हुन बूटे जी सार संभार जो वचन बि कयो वेंदो। मुख़्तलिफ़ सियासी समाजी तंज़ीमनि शागिर्दनि पोरेतनि उस्तादनि समेत समूरनि माहौल दोस्त धुरिन खे वण पोखण वारे सदके जारिया में भरपूर शिरकत जी दावत।
1: आप सुन रहे थे GAFM नेटवर्क पर KTN न्यूज।
2: मटियारी के हो तो आवाज भी मटियारी की है, सुनते रहो GAFM 91.6।
3: यार ही गोडन जो सूर है, चेल जो सूर तो मुझे जान ही करी छड़ी है। हलण वेहण हर कम दुखियो लगे तो।
4: तपोइचा अन्या तई फकीरी एनएल जैसे क्रीम इस्तेमाल न कई थी?
3: न यार, छा वाकई फायदो करे थी?
4: बिल्कुल अदा, कुदरती जुज़न सा तैयार कयल फकीरी एनल्जेसिक क्रीम मुतासिर हंदते जल्दी जज़ब थी। सूर, सोडियम, जिस्म जी नसन जी छिक आई अकराहट मां आराम पहुंचाने में मदद करे थी। चेल जो सूर हुजे, गोडन जो सूर, कंध आई कुलन जी तकलीफ या वर्जिश का पोए छिक हर हालत में बेहतरीन साथी। फकीरी एनल्जेसिक क्रीम
3: इस्तेमाल किए कजे?
4: रुगो मुतासिर हंदते डीह में 3-4 भेरा नरमी सा लगाए आई आराम जो एहसास वच आई बुध। जेकरे उमरे या हजते वनन जो इरादो थई त फकीरी एनल्जेसिक क्रीम जरूर पाण सा गड खणी वंजा।
3: वाह, पोए अजी वठींदस।
4: फकीरी एनल्जेसिक क्रीम अडी पांजे वेजे मेडिकल स्टोर ता नालो वठी खरीद करयो।
5: हक सच जो आवाज, गीत संगीत जो आवाज, जे हैदराबाद मटियारी FM 91.6 सिंध जो आवाज, बुधंदा रहो।

0: जिस धरती से जुड़ा है कलंदर लाल शहबाज,
1: उसी खित्ते की बनी है आवाज।
0: जीए FM नेटवर्क,
1: सिंध की आवाज़।

पता करते हैं लोगों के दिलों को लश्कर नहीं रखते। अस्सलाम वालेकुम रेडियो FM 88 और साथ ही साथ चेहरा मीठी सी आवाज, मासूम सा दिल, स्वीट सी हंसी, परफेक्ट पर्सनालिटी, खुश मिजाज अंदाज, मुझे कहते हैं आरजे रुखसार सिंध की आवाज। हाउ आर यू, कैसे हैं आप? आई होप चुकी जी जहाँ जहाँ भी मौजूद है बिल्कुल टिप टॉप कंट्रोल एक साउंड एकदम स्ट्रांग हेल्थ के साथ मुझे सुन रहे हैं जहाँ जहाँ भी मौजूद है, बिल्कुल मेरे साथ साथ मौजूद है और मेरा पूरा पूरा साथ देने के लिए पूरे पूरे तैयार हैं। पूरे पूरे एक बजे तक आप सुन रहे हैं जिंदगी गुलजार है, जो कि आप सुनते हैं एवरी मंडे टू थर्सडे फ्रॉम 11 टू 1 PM आपका और मेरा साथ रहता है और ये खूबसूरती बड़ा खूबसूरत सा जो कि आज भी जारी और सारी रहेगा पूरे पूरे एक बजे तक। प्रोग्राम में अगर हम सबसे पहले वक्त की बात करते हैं तो जी वक्त हुआ जाता है 11:20 जो कि पाकिस्तान का मेयारी वक्त है, तमाम तरह लोगों की घड़ियों में बज रहा है और इसके अलावा वो लोग जो कि इस वक्त हमें ड्राइविंग करते वक्त सुन रहे हैं, चाहे आप बस में हैं, ट्रक में हैं, रिक्शा में हैं, कार में हैं, बाइक पे हैं, जिसमें भी जहां भी जा रहे हैं आपको कहेंगे हैव अ सेफ जर्नी। बट नेवर, अपनी गाड़ी और अपने गुस्से की स्पीड को हमेशा अपने कंट्रोल में रखिए और ड्राइव कीजिए बिल्कुल सेफली। खुदा खैरियत मौजूद और दवा के लिए खुदा खैरियत।

लोग जिन लोगों का आज बर्थडे है उनको कहेंगे मनी मनी हैप्पी रिटर्न ऑफ द डे हैप्पी बर्थडे टू यू. उसके अलावा वो लोग जो कि बीमार हैं उनको कहेंगे गेट वेल सून. और वो जो कि लाइफ में कुछ बेटर कुछ बड़ा कुछ यूनिक कुछ डिफरेंट करना चाहते हैं तो विश यू वेरी वेरी बेस्ट ऑफ लक. बहुत सारी बेस्ट विशेस आप लोगों के लिए कि आप अपने हर काम में कामयाब होते रहें. आमीन.

इसके अलावा भी प्रोग्राम में हमेशा की तरह बहुत कुछ सुनने को, सुनाने को, समझने को, समझाने को, सीखने को, सिखाने को, बोलने को, बुलवाने को, और वो सारी बातें जो कि आप मुझसे करना चाहते हैं वो सारी बातें आपसे करूंगी। लेकिन उससे पहले प्रोग्राम का पहला कलाम, और इसी के साथ हम चलेंगे आगे। स्टे ट्यून्ड।

प्रज्ञा में आप लोग मुझे ज्वाइन कर सकते हैं जी। तीन तरीके कार से आप लोग मुझे सिंपली मैसेज कर सकते हैं। सिंपली मैसेज करने के लिए अपना मोबाइल उठाइए, राइट मैसेज ऑप्शन में जाइए, SKR टाइप कीजिए, SPCG मैसेज टाइप कीजिए, सेंड कीजिए 8881 पे। कमेंट करने के लिए हमारा फेसबुक पेज है, डैट इज www.facebook.com/GFM88 के पेज के ऊपर पोस्ट मिलेगी आपको, उसके नीचे आप लोगों को कमेंट्स को ड्रॉप करना है, ठीक है। इसके साथ साथ आप लोग मुझे कॉल कर सकते हैं, कॉल करने के लिए हमारा लाइव कॉलिंग नंबर है 03488 और सुनेंगे, एंजॉय करेंगे और एक छोटे से कमर्शियल ब्रेक, स्टे ट्यून्ड, जिंदगी गुलजार है।

ब्लॉक मेरा फ्रेंड मेरा विटामिन और एवोकाडो में फोली एब्स खुदे बेटा निखरा निखरा चेहरा व्हाइट एज ब्यूटी सोप से मिले चमकता निखार ताजगी के साथ ग्लोइंग स्किन का 91.6

0: के हो तो आवाज भी सिंह की है। GFM 88 नेटवर्क। सलाम, कौन बात कर रहे हैं? क्या नाम दोबारा बताइएगा?
1: जुलारा।
0: क्या नाम आप?
1: जुलारा का मतलब मुझे ये मालूम नहीं है मैडम।
0: मतलब मालूम नहीं है? ओके ठीक है। जुलारा प्रोग्राम सुनती हैं?
1: जी अल्हम्दुलिल्लाह। मुझे दो महीने से।
0: अरे वाह क्या बात है। तो मुझे चलें ठीक है बता। सॉरी आपकी आवाज कट रही है, बहुत ज्यादा डिस्टॉर्शन के साथ आ रही है।
1: अभी आ रही है? अभी आ रही है।
0: अभी बताएं।
1: दुश्मन
0: ज़ीशान
1: रोकड़ी का।
0: ज़ीशान रोकड़ी का। ओके मैंने कहा दुश्मन का गाना सुना ले।
1: ज़ीशान
0: रोकड़ी का। चले मैं अपनी तरफ से अच्छा सा सुनवाती हूँ। किसी को डेडिकेट करना है? सबको करना है। चलें सबको डेडिकेट करेंगे। और ज़ीशान आपको एक अच्छा सा
1: मसाला बहुत अच्छा है ही प्यारी है। आप प्रोग्राम भी मसाला बहुत अच्छा करती हैं।
0: थैंक यू सो मच। बस ये
1: आप लोग आपका प्रोग्राम सुनते हैं रेडियो पर?
0: रेडियो पर सॉरी
1: कान लगाकर सुनती
0: हैं? कान लगाकर सुनती हैं। अरे वाह, तो रेडियो पे सुन रही होती हैं?
1: जी जी रेडियो पे बना लगाया हुआ है। प्रोग्राम करती हूँ।
0: बड़ी नवाजिश। थैंक यू सो मच। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा।
1: जी जी आपकी डांस सुनाती अभी आ रही है।

0: पहले सॉरी मैं आपकी आवाज नहीं समझ पा रही।
1: अभी मैंने कहा आपकी ट्रांसमिशन अगर ठीक नहीं आ रही, पहले ठीक आ रही थी।
0: अच्छा आज नहीं आ रही, कहाँ पे नहीं आ रही? चलिए हम देखते हैं कि क्यों नहीं आ रही और इसको हम चेक करते हैं कि क्यों नहीं आ रही। ठीक है ओके जी। और ज़ीशान रोकड़ी का गाना मैं देख रही थी कि मुझे कोई अच्छा सा गाना मिल जाए। और हम प्ले करेंगे ज़ीशान रोकड़ी का एक अच्छा सा गाना। और अभी शायद मैंने सर्च करके सामने भी देखा था, मतलब मैंने उसको लाइन अप करके रखा था, लेकिन होता है ना कि जिस चीज को आप जिस टाइम पे ढूंढ रहे हो वो उस टाइम पे मिलती नहीं है। शायद हमारे साथ भी कुछ ऐसा ही हो रहा है, लेकिन खैर हम क्या करेंगे, हम ये करेंगे कि हम सर्च करेंगे और 03000113488 के ऊपर एक और कॉलर ले लेंगे। तब तक हेलो,
2: अस्सलाम वालेकुम।
0: वालेकुम अस्सलाम, कौन बात कर रहे हैं? सॉरी नाम बताइएगा।
2: अजीज सोलंकी।
0: अजीज सोलंकी कैसे हैं, ठीक ठाक?
2: दाँ दाँ
0: जी अल्हम्दुलिल्लाह। मुझे बताइएगा कि प्रोग्राम सुन रहे हैं, गाना सुनाएंगे?
2: जी और जी प्रोग्राम बता दो, मतलब सुनाना जब
0: गाना सुना दे
2: वो कैसे भी कैसे भी तेरेगी उमरिया दिल पे मेरे।
0: ओके किसका गाना है
2: ये? मसूर गाना जो है।
0: ओके हम प्ले करते हैं जी, किसी को डेडिकेट करना है? चल नहीं जी, थैंक यू, अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। ओके कॉल भी ड्रॉप हो चुकी है जी साथ साथ। और हियर कम्स द सॉन्ग ऑफ ज़ीशान रोकड़ी।

0: FM 88 नेटवर्क दे।
1: दरियाए सिंध की लहरों के संग रवां दवां, यह है मोहब्बतो यकजहती का पैगाम, यहाँ वहाँ जी FM 88 नेटवर्क, सिंध की आवाज़।

0: देखिए रासे उल्फत 7 अप्रैल से मंगल की रात 8 बजे सिर्फ जियो पर।
1: हर दिन हर पहर जिंदगी की लहर जीएफएम 88 नेटवर्क सिंध की आवाज़।

0: Welcome back once again. I'm sun rahe hain zindagi guzar hai aur mujhe kehte hain RJ Ruksaar gana sunao jisme hum aap logo ki live calls ko entertain kar rahe hain. Next caller lenge aur check karenge caller kahan se. Hello.
1: Hello,
0: waalaikum assalam. Ji kaun kahan se?
1: Main Sagar baat kar raha hu.
0: Sagar bhai kaise hai? Theek thaak.
1: Khairiyat khairiyat.
0: Gana sunayenge.
1: Gana sunaunga kadal se.
0: Okay, suna de.
1: Dil ki dil ke pyar ne jannat se kami hai. Ek dil luba hai dil ne do huro se kami. Duniya kisi ke pyar ne tum badshah ho suno. उसने जान हो तुम बादशाह हो उसने जान हो जाने वफा तुम हो मोहब्बत की शान हो जलवे तुम्हारे हो उसके तारों से कम नहीं
0: ओके जी. और किसी को डेडिकेट करना है?
1: डेडिकेट
0: ओके जी, फिर थैंक यू सो मच. अल्लाह हाफिज. ये रहा गाना.

रात हम गाना पे और आगे जिसका नाम है हरा भरा पाकिस्तान जी. और एवरी वेरी वाले दिन हम 12 बजे के बाद वो सेगमेंट कर रहे होते हैं. तो आज भी हम होंगे और हमारे साथ एक गेस्ट मौजूद होंगे. ठीक है जी, एक और गाना प्ले करेंगे, एक और गाने बजाएंगे, क्योंकि आज सखर का मौसम कुछ जिंदगी सा अच्छा है. तो मैंने सोचा कि क्यों ना कोई मौसम वाला गाना प्ले किया जाए, कोई अच्छा सा रोमांटिक वाला गाना प्ले किया जाए. तो फिर मुझे याद आया कि तुम्हारे शहर का मौसम बड़ा सुहाना लगे, मैं शाम चुरा लूं अगर बुरा ना लगे. अगर तो ये इसी के साथ हम और फिर के बाद

0: ये FM
1: अपना शहर अपना घर मटियारी और मटियारी की आवाज
2: GFM 91.6।
3: अल हबीब करंट प्लस अकाउंट, भरोसा भी, रफ्तार भी, बैंक अल हबीब, रिश्ता भरोसे का।
4: अब आप सुनेंगे GFM नेटवर्क पर KTN न्यूज।
5: सखर में मुड़स डाल के घुटा दई कतल करे छो, लेबर कॉलोनी फ्लैट्स में जवाबदार गुलाम शबीर शेख शबाना शेख के घुटा दई कतल करे फरार थी वयो। पुलिस जो चवण है तो जवाबदार जाल के गरु मामले ता घुटा दई कतल कयो है। जवाबदार जे गिरफ्तारी लाए छापा हया पया वनन।
6: खिपरो में गुजरल ईफुर मदामत ते कतल थियल परत भेरूकोली जे वारसन जो लाश सुधो बे डी भी धरणो जारी। धरने में बार औरतन समेत सिविल सोसाइटी जा मानू भी शरीक। इलाके जो को भी चूंडल नुमाइंदो मुतासर वक्त पहुतो। मुजाहिरीन जो जवाबदारी की गिरफ्तारी तई धरणो जारी रखने जो ऐलान।
5: में पानी के कोट खिलाफ मुजाहिर धरणन जो सिलसिलन जे पानी के कोट खिलाफ थाम खड़ी मुजाहिरो धरणो गोठ शाह खड़ी एहतजाज कयो। पानी फराहम करण जो मुतालबो। नसीराबाद में सिंध जे पानी ते रैली कढ़ी वही।
6: जैकबाबाद के बलादास रेलवे फाटक भरसा ख्वाजा सराज लाश सथ इलाके वास जितलादे पुलिस वाके वाले हंध पहुंची लाश अस्पताल मुंतकिल कर। डॉक्टर चवा है ख्वाजा सराज मौत तबी थी सके तो जिस्म ते तशद्दुद निशान मौजूद ना हिन। पुलिस पारा जांच जारी।
5: में सिपको जे मकानी रिजकारी खिलाफ मुलाजमन जो एहतजाज। मुलाजमन कम छे हड़ताल करे ऑफिस के ताला हणी एहतजाज कयो। सिपको मुलाजमन चयो तो वफाकी हुकूमत वापडा के खानगाणी जे कोशिश में रुधल आहे जेको कबूल ना है। निजकारी जो फैसलो वापस वरतो वने।
4: अब आप सुन रहे थे नेटवर्क पर KTN न्यूज।
1: मटियारी के हो तो आवाज भी मटियारी की है। सुनते रहो GFM 91.6।
7: यार कुछ डीन खां चेल जो सूर जोड़न जी तकलीफ अया साबी दर्द इतरो वधी वियो आहे जो हलन फिरन भी दुखियो लगे थो।
8: तो पोई तू फकीरी डेक्स ऑइंटमेंट इस्तेमाल छो न तो करी?
7: इहा वाकई फायदे वारी आहे छा?
8: बिल्कुल, फकीरी डेक्स मरम मुतासिर थियल हंध ते आसानी सा जज़ब थी सूर आई सोडियम आराम पहुंचाने में मदद दे थी।
7: सिर्फ चेल ही सूर लाए?
8: ना दा, आसाबन जो सूर, जोड़न जो सूर, कंध आई चेल जी तकलीफ, सट, धक लगन, पुराणन जख्म जे सूर आई चमड़ी जे जलन लाए भी फायदेमंद आहे।
7: इस्तेमाल किए कजे?
8: मुतासिर थियल हंध ते डीह में बह खां टे भेरा नरमी सा लगायो आई आराम जो एहसास हासिल करियो। जी हाँ, फकीरी डेक्स ऑइंटमेंट, सूर खां आराम, हर रोज हर कदम। अड़ी वेजे स्टोर ता नालो वठी खरीद करियो फकीरी डेक्स ऑइंटमेंट।
9: हक सच जो आवाज, गीत संगीत जो आवाज, जीए हैदराबाद मटियारी FM 91.6, सिंध जो आवाज, बुधंदा रहो।

0: It's 12:15 p.m.
1: This time check is brought to you by
2: D Skin Beauty Cream. Asli Glow Har Niya Josho. A product by Biocon International Pakistan.
3: Har din har peher. Zindagi ki leher. GFM 88 Network. Sindh ki awaaz.
4: खां अलावा शुगर ऐं ब्लड प्रेशर जे करे पैदा थींदड़ अखियुनि जे पर्दे जे
5: पहली बात ठीक है और वो शर्कन और गर्बन का जिक्र ठीक है तो मुख्तसर ये है कि कुरान में भी फिर हदीस मुबारक में आता है अल्लाह माफ करे कमी बेशी उसमें कि उसमें आता है कि ये 70 बीमारियों के लिए शफा है ठीक है तो अगर हम सारे लगे रहे ना तो 70 बीमारियां काउंट करें तो हो सकता है एक माह भी लग जाएगा तो हम 70 बीमारियां नहीं नोट कर सकते जो उलमा लोग हैं जो मुफ्ती लोग हैं वो फरमाते हैं कि अक्सर बीमारियां इससे ठीक हो सकती हैं और मैंने तो खुद मसलन पिछले 40 साल इस पे काम करते हुए इस दौर में मैंने खुद देखा कि बड़ी बड़ी जो बीमारियां हमारी मिसाल के तौर पर कैंसर की सूरत में है शुगर की सूरत में है हार्ट की सूरत में है ठीक है कोलेस्ट्रोल है यूरिक एसिड है मसलन इस तरह की जो बड़ी बीमारियां हैं बवासीर की सूरत में मसलन वो इससे ठीक होती देखी ठीक है तो अल्हम्दुलिल्लाह फिर ये हमारे आने वाली जो नस्ल है बच्चे हमारे बीमार है अगर इनके खानों में अगर हम इस जैतून का इस्तेमाल करें तो एक हेल्दी फूड होने के निस्बत से जो है ना उनकी सेहत अच्छी हो सकती है हम अस्पतालों से बच सकते हैं हम गोलियां और टीकों से बच सकते हैं अपने बीमारों को बचा सकते हैं तो इसको माशरे में इसकी बहुत ज्यादा जरूरत है और दुनिया 500 साल 600 साल से जो है ना इस पे काम कर रही है हम तो अभी शुरू हुए हैं लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह हमारा रुख सही है ठीक जा रहे हैं हम ठीक है अभी तो ये कि हम जो है ना ये 2025 में जो ओले वाले ममालिक हैं उसमें हमारा भी शुमार कर दिया गया ये 26 में जो है ना अनाउंसमेंट हो गई है पाकिस्तान जो है ना ओले वाले ममालिक में शामिल हो गया तो इस जो है ना हमें बहुत से बेनिफिट भी मिलेंगे और इसके साथ साथ जो है ना हमारे जो है ना लोग इसको अभी इस्तेमाल में ला रहे हैं घरों में जो है ना इस्तेमाल हो रहा है ठीक है तो इससे इंशाल्लाह आने वाले दिनों में हमें बहुत से फायदे मिलेंगे बहुत सी हमारी डिजीज कम हो जाएंगी हमारे माशरे में ठीक है तो इंशाल्लाह इसके बहुत से बेनिफिट हैं ये हम जो माशरा है हमारा उस तक अगर ये हमारी आवाज जिस तरह आप लोग अभी आपने भी आप लोगों ने भी शुरू की है तो इंशाल्लाह ये हमारी आवाज उन लोगों तक भी पहुंचेगी वो भी अपने माएं खसूसी तौर पर अपने बच्चों की गजा में इसको शामिल रखें तो वो इंशाल्लाह अच्छे कौन के मेहमान बनेंगे ठीक है अच्छी सेहत होगी उनकी ठीक है बेटा थैंक यू
6: ओके जी अच्छा आप हमें ये बताइए क्योंकि हमारे सुनने वालों को नहीं पता होगा क्योंकि बहुत सारे लोगों ने अभी तक ऑलिव का इस्तेमाल उस तरीके से नहीं किया जिस तरह करना चाहिए तो आप हमें बताइए कि ऑलिव का इस्तेमाल हम किस किस तरीके से कर सकते हैं जिस तरह आपने बात की कि डिफरेंट जो बीमारियां होती हैं फुल रहता है ऑलिव तो इसका इस्तेमाल किन तरीकों से हम इससे क्या क्या बना सकते हैं
5: पहली बात तो ये है कि इसका जो इस्तेमाल है वो तो ये है कि बहुत ज्यादा है ठीक है अमूमन लोग तलाश करते हैं कि जी मुझे खालस तेल नहीं मेरा खालस तेल नहीं है जी मिलावट है लेकिन लोग खुद क्या करते हैं खुद या तो दूध में लेते हैं ठीक है वो भी मिलावट हो गई खाने में लेते हैं वो भी मिलावट हो गई मसलन खुद वो खालस नहीं लेते ठीक है तो मेरी जो राय जो एडवाइस तजवीज है ठीक है मेरा मशवरा है कि वो इसको खालस लें अगर शुगर का पेशेंट है तो 2 चम्मच सुबह खाली पेट ले लेकिन उसने पहले पानी भी ना पिया हो बिल्कुल खाली पेट हो और फिर वो 1 घंटा कुछ खाए पिए ना ताकि उसको खालस बिल्कुल जिस्म में डे तो उसको अच्छे रिजल्ट मिलेंगे इसी तरह असर और मगरब के दरमियान अगर शुगर ये ले ले सुबह और शाम ठीक है तो उसमें लेंगे बेशक वो 1 महीने के बाद अपना टेस्ट करवा ले और आहिस्ता आहिस्ता अपनी जो उसकी टेबलेट

सिस्टम भी इसी तरह वो भी दे रही है, ठीक है। तो उसमें बलूचिस्तान में भी बहुत से तकरीबन इस वक्त 35-40 लाख पौधा जो है ना वहां पे भी लग चुका है, पंजाब में भी 35-40 क्रॉस कर गया है, फिर केपी के वो भी 40 लाख तकरीबन क्रॉस कर गया है, कुछ 50 हजार तो इस वक्त से ज्यादा गलगित जो है ना बलूचिस्तान में लग चुका है। इसी तरह कश्मीर भी जो है ना तकरीबन 1 लाख से ज्यादा, और खास तौर पे कश्मीर साइड पे जो हमारा देसी है कऊ के नाम पे जो जैतून है उसको ग्राफ्ट किया जा रहा है, केपी के में बहुत ज्यादा ग्राफ्टिंग हो चुकी है। तो बिजनेस पे जो हमारी हुकूमतें हैं वो काफी काम कर रही हैं और उसके लिए जो है ना काफी वो बजट जो है ना मुख्तस कर रही हैं। इसके लिए मेरी एक रिक्वेस्ट है आपके इस प्रोग्राम के तावन से कि खास तौर पे जो हमारी बलूचिस्तान की हुकूमत है और केपीके की हुकूमत है वो भी कोई पैसा जो है ना इसके लिए अलग रखे, इसकी जो कऊ की ड्राफ्टिंग है उसके लिए या जैतून के लिए, जिस तरह एक पंजाब गवर्नमेंट ने एग्रीकल्चर में ऐसा डाला है इसका जैतून का तकरीबन 7 अरब रुपए का, ठीक है। तो इस तरह इन हुकूमतों को भी, कश्मीर हुकूमत को भी और जीबी वालों को भी चाहिए कि कुछ इसके लिए मुख्तस करें ताकि जो है ना ये बेहतर

0: GAFM 88 हक सच जो आवाज गीत संग हक सच जो आवाज गीत संगीत जो आवाज जीए हैदराबाद मटियारी FM 91.6 सिंध जो आवाज उधरदा रहो उधरदा रहो.
1: It's 12:45 PM. This time check is brought to you by.
2: हम इस्लामिक बैंकिंग के फरोग में अपना फाल किरदार मुसलसल अदा करते रहेंगे. अस्करी बैंक.
3: यार कुछ डीहन खा चेल जो सूर जोड़न जी तकलीफ अया साबी दर्द एतरो वधी वियो आहे जो हलन फिरन भी दुखियो लगे थो.
4: तो पोइ तू फकीरी डेक्स ऑइंटमेंट इस्तेमाल छो न तो करी.
3: इहा वाकई फायदे वारी आहे छा.
4: बिल्कुल फकीरी डेक्स मरम मुतासिर थियल हंध ते आसानी सा जज़ब थी सूर आई सोडियम आराम पहुँचाने में मदद दे थी.
3: सिर्फ चेल ही सूर लाए
4: न दा आसाबन जो सूर जोड़न जो सूर कंध आई चेल जी तकलीफ सट धक लगन पुराणन जख्म जे सूर आई चमड़ी जे जलन लाए भी फायदेमंद आहे.
3: इस्तेमाल किए कजे
4: मुतासिर थियल हंध ते डीह में ब खां टे भेरा नरमी सा लगायो आई आराम जो एहसास हासिल करियो. जी हाँ फकीरी डेक्स ऑइंटमेंट सूर खां आराम हर रोज हर कदम अड़ी वेजे स्टोर ता नालो वठी खरीद करियो फकीरी डेक्स ऑइंटमेंट.
5: सिंध का है ये मुनफरिद एजाज तहजीब की रखवाली और मेहमान नवाज
6: ताडू सुठो
5: जीए FM 88 नेटवर्क
1: सिंध की आवाज.

آپ کی جی لاسٹ میں لاسٹ لکی کالرز بھی انٹرٹین کریں گے 03000113488 کے اوپر.

0: ओके साथ साथ कुछ कमेंट्स हैं. गुलाम मोहम्मद मरी बलोच हमें सुन रहे हैं, आपको अभी ज्वाइन किया है. ओके जी वेलकम टू द शो. मीरपुर खास से हमारे साथ साथ मौजूद है इकबाल लाशारी हमें सुन रहे हैं, शमसुद्दीन गब्बर हमें सुन रहे हैं जी, और कौन सुन रहे हैं, और भी बहुत सारे लोग सुन रहे हैं. सो 03000011348 के ऊपर लास्ट एंड लकी कॉलर को हम चेक करने जा रहे हैं और हम देखेंगे कि लास्ट एंड लकी कॉलर कौन होंगे, कहां से होंगे. ओके जी सो कॉलर हमारे साथ मौजूद हैं, लास्ट एंड लकी कॉलर. हेलो
1: हेलो अस्सलाम वालेकुम.
0: वालेकुम अस्सलाम. कौन कहां से? ओके आसिफ अली चाचर लास्ट लकी कॉलर हैं. मुझे बताएं आज की अच्छी बात.
1: आज की अच्छी बात है अपनी सेहत का खास ख्याल रखो.
0: ओके
1: सिंधी सॉन्ग सुनाओ.
0: ओके ओके जी वैसे हमने ये कल प्ले किया था. थैंक यू. 03000011348 क्योंकि हम लास्ट में लास्ट लकी कॉलर की कॉल्स दो पिक करते हैं तो हम एक और पिक करेंगे और चेक करेंगे कि नेक्स्ट जो कॉलर हैं वो कौन है. हेलो
2: अस्सलाम वालेकुम.
0: वालेकुम अस्सलाम सरदर्द, कैसी हो?
2: बिल्कुल ठीक हूँ, आप बताए कैसे?
0: मैं भी बहुत अच्छी हूँ. मुझे बताओ कि आज की अच्छी बात क्या है?
2: जो शख्स आपको कोने से ना डरे के पाने की ख्वाहिश आपकी ना करे.
0: वेरी नाइस. कहाँ से सीख रही हो बातें?
2: सीख रही हूँ, देख लो.
0: चले बहुत जबरदस्त, बहुत अच्छा. और कुछ कहना है सरदर्द?
2: अच्छा अब दो दिन बोले तो हमारे फिल्म नहीं होगी, दो दिन चलेगी.
0: नहीं हम उसको दो दिन नहीं करेंगे, हम उसको चारों दिन करेंगे. ठीक है एक नया सेगमेंट में मैं सोच रही हूँ और वो कुछ ही दिनों में मैं फिर शेयर करूंगी कि वो है क्या, और मेरे ख्याल से उसमें आपको और भी ज्यादा मजा आएगा.
2: बिल्कुल आपकी ट्राई से तो मजा तो आएगी ना.
0: बस देख लें, सोच लें.
2: तब तक मैं सोचती रहूंगी क्या होगी.
0: चले आप सोचें. बिल्कुल बिल्कुल आप सोचें, और अगर कोई आइडिया आपके जहन में आता है तब भी आप वो मुझसे शेयर कर सकते हैं, आप भी और सब जितने भी सुनने वाले हैं सब. ठीक है और कुछ कहना है? अल्लाह हाफिज. लास्ट पर प्ले कर रहे हैं फरहान सईद की आवाज को, और इसी के साथ फाइनली हम लेंगे आपसे इजाजत. इंशाल्लाह मेरी आपसे अब चर्चा होगी कल ऑन सेम टाइम सेम चैनल सेम शो विद द सेम आरजे, सुनना मत भूलिएगा. जिंदगी गुलजार है, अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा. सो दिस इज मी आरजे रुखसार साइन्स आउट. टेक केयर, गुड बाय, अमानी खुदा, अल्लाह हाफिज.

0: अपना शहर अपना घर मठियारी और मठियारी की आवाज
1: GFM 91.6।
2: It's 1 p.m. This time check is brought to you by
3: Fakiri Dex Ointment.
4: Tez aaram, muasir hifazat aur qabil aitmad mayar.
3: Har acche store se naam lekar talab kijiye.
5: Ab aap sunenge GFM network par KTN News.
6: खैबर पख्तूनख्वा में बरसातुन तबाही मचाए छी। बरसात ए बोरी के नतीजे में फोत थन्दड़न अंग वी उणवी थी वो उणवी जना जख्मी भी थी पाया। पीडीएम मूजिब फोतिन में 11 मर्द 4 औरतों 4 बार शामिल है। बरसात दौरान घर जो छितियों भितियों किरण वाले वाक्य में फोतक थी। पंजाब के शहर गुजरावाला में बे ढी भी बरसात जारी। बिन ढीन दौरान हादसों के नतीजे में 8 जना फोत। हेठाई वाले इलाक में गोडे जो पानी बीठल रहवासी सख्त परेशान।

0: अमेरिका जा ईरान ते यारहें ॾींहं बि हमला।
1: ईरानी शहर तेहरान, तबरेज़, सीरक ऐं ॿियनि समुंडी इलाइक़नि खे निशानो बणायो वियो। अमेरिकी सेनेट खां मौजूदु ताज़नि हमलनि जो मक़सदु ईरान जे बहिरी जहाज़नि ख़िलाफ़ सलाहियतनि खे कमज़ोर करण हो। ईरानी फ़ौज जा बि जवाब में मौजूदु अमेरिकी अॾनि ते हमला। पासदारनि इंकलाब मौजूदु कुवैत में ड्रोन ज़रिए निशानो बणायो वियो आहे, जंहिं जे नतीजे में अमेरिकी फ़ौज जो वॾो नुक़सान थियो आहे।
2: ईरान सां हिन वक़्त बि ॻाल्हियुनि जे लाइ तयारु आहे। तेहरान ॻाल्हियुनि जे हवाले सां संजीदा न आहे। अमेरिकी परॾेही वज़ीर मार्को रूबियो चयो आहे त

0: का ईरान बहरान जो खात्मो ॻाल्हियुनि ज़रिए चाहे थो, ॿी धुर संजीदा न हुअण सबबि मसइलो आहे। तहरान ॻाल्हियुनि जे लाइ संजीदा न आहे।
1: पेंटागोन ईरान खिलाफ़ जंग लाइ सेनेट खां वधीक 87 अरब डॉलर घुरी वरिता आहिनि। अमेरिकी दिफ़ा वारे वज़ीर सेनेट कमेटी खे आगाही ॾींदे चयो त ईरान खिलाफ़ जंग में हिन वक़्त ताईं 37 अरब डॉलर ख़र्च थी चुका आहिनि। पेंटागोन खे वधीक 87 अरब डॉलर घुर्बल आहिनि, जंहिं मां 7-8 अरब डॉलर विच ओभर में जंगी कार्रवाईनि लाइ रखिया वेंदा। दिफ़ाई वज़ीर सत जा ब्रीफिंग दौरान डेमोक्रेटिक सेंटर्स सां सख़्त जुमिलनि जी ॾेवठ बि थी। डेमोक्रेट सेंटर्स हेक सत खे नाकाम वज़ीर बेक़रार ॾिनो।

कराची में सिंध सेक्रेटेरिएट साम्हूं लेडी हेल्थ वर्कर्स जो धरणो जारी। सूबे जे मुख़्तलिफ़ शहरनि खां पहुतल लेडी हेल्थ वर्कर्स धरणे में शरीक। लेडी हेल्थ वर्कर्स जो पीपीएचआई में जम करण वारो हुकूमती फ़ैसिलो रद्द। लेडी हेल्थ वर्कर्स चयो आहे त सिंध हुकूमत संदन पघारूं बंदि करे छॾियूं आहिनि, पघारूं जारी कयूं वञनि।

0: सखर में मुर्स जाल के गुटा डेई कतल कर छो। लेबर कॉलोनी फ्लैट्स में जवाबदार गुलाम शबीर शेख शबाना शेख के गुटा डेई कतल कर फरार थी वयो। पुलिस जो चवण है तो जवाबदार जाल के घरू मामले तां गुटा डेई कतल कयो है। जवाबदार की गिरफ्तारी लाए छापा हया पया वन।
1: आप सुन रहे थे GAFM नेटवर्क पर KTN न्यूज।
2: मटियारी के हो तो आवाज भी मटियारी की है, सुनते रहो GAFM 91.6।
3: फकीरी नीम प्रिकली हीट सोप जल्दी इन्फेक्शन से बचाव का बेहतरीन जरिया है।
4: फकीरी नीम प्रिकली हीट सोप
3: जल्दी एलर्जी और खारिश के लिए मुफीद है।
4: फकीरी नीम
3: वकील महा के लिए
4: फकीरी नीट सोप गर्मियों में दे ठंडक का बेहतरीन एहसास, हर रोज कुदरती निखार।
3: फकीरी नीम प्रिकली हीट सोप
4: जिल्द को गहराई से साफ करने, जरासीम से तहफ़ुज़ फराहम करने और गर्मी की वजह से होने वाली घुमरियों, खारिश और बदबू को कम करने में मदद देता है। फकीरी नीम प्रिकली हीट सोप
3: हर अच्छे स्टोर से नाम लेकर तलब कीजिए।
5: हक सच जो आवाज, गीत संगीत जो आवाज, जीए हैदराबाद मटियारी FM 91.6, सिंध जो आवाज, उधर ना रहो।

कैसे हैं आपकी हालत है? उम्मीद है शदीदन के बिल्कुल ठीक ठाक होंगे। सुपकुल मूड के साथ सुपकुल प्रोग्राम का इंतजार कर होंगे, तो आपके जो इंतजार की घड़ियां थी वो खत्म हो चुकी है और फाइनली यहाँ पर हमने एंट्रियां मार ही ली हैं। आपको पता ना, जब हम एंट्रियां मारते हैं तो बहुत सारे लोगों के दिलों में घंटियां बजाते हैं, तो यकीनन आपके दिलों में भी घंटियां बजाएंगे और आपको बताएंगे कि आपका हमारा साथ रहने वाला है ठीक अब से लेकर पूरे पूरे 3 बजे तक, यानी कि 2 घंटे हमारे पास मौजूद होंगे। इन 2 घंटों में आप सोच लीजिए हम कितनी ज्यादा वाली बातें करने वाले हैं। तो बिल्कुल जी, ना सिर्फ बातें करेंगे बल्कि आप लोगों के लिए अच्छे अच्छे गाने भी लगाएंगे। आप लोगों को व्हाइटिश ब्यूटी प्रोडक्ट्स एंड स्किन ब्यूटी प्रोडक्ट्स के बारे में भी बताया जाएगा, यानी कि कुछ ऐसी चीजें होती हैं जो क्लियर करना बहुत ज्यादा जरूरी होती है। तो बिल्कुल वैसे ही व्हाइटिश ब्यूटी प्रोडक्ट्स हो या फिर स्किन ब्यूटी प्रोडक्ट्स हो, इनके बारे में बहुत सारी चीजें जो कि क्लियर की जाएंगी, और साथ ही साथ आप कहां से जाकर परचेज करने वाले हैं, आपके एरिया में अवेलेबल है या नहीं, ये चीजें भी आप लोगों को बताई जाएंगी। तो यहाँ पर बहुत से लोग हमारे साथ ऐसे मौजूद होते हैं जो कि अपने कामों के दौरान हमें सुन रहे होते हैं। बहुत से लोग ऐसे जिन्होंने अपने सारे काम कर लिए, यानी कि फ्री होकर हमारा इंतजार कर रहे थे। ऐसी बहुत सारी आंटियां, अम्मियाएं, खालाएं, बाजियां और पापा की परियां जो हमें किचन में सुन रही होंगी, यानी कि लंच बनाने के दौरान। तो भी अपने काम भी कीजिए, हमें भी सुनिए, आपको कहेंगे वेरी वाली गुड आफ्टरनून। साथ ही साथ अगर आप लोगों ने घर वालों के ताने सुनी लिए हैं तो जनाब आप जबरदस्ती गाने सुनने के लिए जरा रेडी हो जाइए। तो बिल्कुल जी रेडी हो जाइए, और यहाँ पर आप लोगों की जो है ना, हाँ जी, आप लोगों के लिए ऐसे कर लेते हैं प्रोग्राम में सबसे पहले जो ना आगाज से प्रोग्राम कर लेते हैं, और आगाज से प्रोग्राम करेंगे आज एक बहुत ब्यूटीफुल से कसीदे के साथ। एक बहुत ही प्यारा खूबसूरत सा कसीदा हमारी लिस्ट में मौजूद है, तो मैं चाहती हूँ कि जरा हम पहले कसीदा सुन लेते हैं, उसके बाद हम जैसे ही वापस आते हैं तो बताते हैं कि आज के प्रोग्राम में आप लोगों के लिए क्या होने वाला है। तो बिल्कुल जी, आप सुन रहे हैं व्हाइट एज एंड स्किन ब्यूटी शो, स्पॉन्सर्ड किया जा रहा है व्हाइट एज ब्यूटी प्रोडक्ट्स एंड स्किन ब्यूटी प्रोडक्ट्स। लगाइए ताकि आप भी खूबसूरत हो जाए।

आप मुझे बताएं कि दुनिया में पिज्जा किस शहर के लोग खाते हैं। बिल्कुल जी, आज के प्रोग्राम का सवाल मैंने आप लोगों से ये पूछा कि आप मुझे बताएं कि दुनिया में सबसे ज्यादा पिज्जा जो है वो किस शहर के लोग ज्यादा खाते हैं, यानी कि किस शहर में सबसे ज्यादा पिज्जा खाया जाता है। इसी के साथ साथ अगर आप हमारे साथ मौजूद हैं, जुड़ना चाहते हैं, प्रोग्राम का हिस्सा बनना चाहते हैं, तो ऐसा कीजिए, अपना सेल फोन उठाइए, मोबाइल के राइट ऑप्शन में जाइए, टाइप कीजिए LRK सिंगल स्पेस दीजिए, अपना नाम लिखिए, पूरा मैसेज लिखिए और उसे सेंड कीजिए 8881 पर। अगर आप मुझे फेसबुक पर सुनना चाहते हैं तो जी लाड़काना FM 88.8 हमारा पेज है जनाब। जैसे ही आप सर्च करेंगे तो आपको आराम से हमारा पेज मिल जाएगा, और पेज को सर्च करने के बाद आप जब पेज पर आ जाएं तो आपको हमारे प्रोग्राम की पोस्ट मिल जाती है जो कि लाइव होती है वाई जेशन जी स्किन ब्यूटी शो के, जिसे आप लाइक करेंगे, कमेंट करेंगे और शेयर करेंगे। तो पोस्ट को लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और शेयर करते जाइए, बताइए आप हमारे साथ मौजूद हैं, सुन रहे हैं ये भी बताइए, और साथ साथ टॉपिक को फॉलो करते रहिए कि दुनिया में सबसे ज्यादा पिज्जा जो है वो किस शहर के लोग खाते हैं। हाँ जी, इसी के साथ साथ जो है अगर आप हमारे साथ मौजूद हैं, जुड़ना चाहते हैं तो जल्दी से ज्वाइन कीजिए, और साथ ही साथ अगर आप वाई जेश ब्यूटी प्रोडक्ट्स हो या फिर जी स्किन ब्यूटी प्रोडक्ट्स को अपने करीबी जनरल स्टोर पर अवेलेबल कराना चाहते हैं तो उसके लिए आपके पास जो नंबर्स होने चाहिए जिनके ऊपर आप बेधड़क राबता करते रहें, आप लोगों को बताया जाए कि अगर आप फलां जगह से हैं तो आप फलां जगह से जाकर जो है ना वाई जेश ब्यूटी प्रोडक्ट्स का इस्तेमाल कर सकते हैं परचेज करके, या तो जी स्किन ब्यूटी प्रोडक्ट्स अगर आप परचेज करना चाहते हैं तो वो भी आप परचेज कर सकते हैं। तो अगर आप लोगों को नंबर्स बताए जाए तो नंबर जरा नोट करते जाइएगा। नंबर है एक, पहला नंबर 02512507 03 12 50 25 907, और दूसरा नंबर है 03 273 38 43 09 03 273 38 43 09। ये नंबर से आपकी आसानी के लिए अगर आप अपने करीबी जनरल स्टोर्स पर अवेलेबल कराना चाहते हैं, चाहे वो वाइट एज ब्यूटी प्रोडक्ट्स हो या फिर जी स्किन ब्यूटी प्रोडक्ट्स हो, तो आसानी से करवा सकते हैं। उन्हें बताइए कि आप लेना चाहते हैं और आप चाहते हैं कि आपके करीबी जनरल स्टोर्स पर अवेलेबल होने चाहिए। चाहे आप किसी भी जो इना सिटी से ताल्लुक रखते हैं, किसी भी गोड से ताल्लुक रखते हैं, तो आप अपने करीबी जनरल स्टोर्स पर अवेलेबल कराते रहिए। ऐसे के साथ साथ अगर आप भी वाइट एज ब्यूटी प्रोडक्ट्स का इस्तेमाल करना चाहते हैं तो वाइट एज ब्यूटी प्रोडक्ट्स में आप लोगों के लिए बहुत सारे बहुत अच्छे अच्छे प्रोडक्ट्स मौजूद हैं, जैसे कि आपको वाइट एज ब्यूटी क्रीम मिल रही है, नाइट क्रीम, वाइट एज लवली क्रीम है जो कि फेयरनेस क्रीम है, डॉक्टर पिंपल एंटी एक्नी ट्यूब है, उसके अलावा वाइट एज का ब्यूटी सोप है, वाइट एज का फेस वॉश है, ऐसे बहुत सारे प्रोडक्ट्स हैं, और साथ साथ जी स्किन ब्यूटी क्रीम आपको मिल रही है और साथ में जी स्किन फेस वॉश आपको मिल रहा है। अब इनके क्या तरीकेकार होंगे लगाने के वो आप लोगों के साथ शेयर करती रहूंगी, लेकिन यहाँ पर आप हमें ज्वाइन करते जा रही, तो हमारे साथ यहाँ पर मौजूद है जी अनवर अली। दीदी अस्सलाम वालेकुम, हाय सिद्रा, कैसी हो? अदी गुड आफ्टरनून, हैव अ नाइस डे, आपको भी वेलकम कहा जाता है। आदिल हुसैन, वालेकुम अस्सलाम, कहते कैसी हैं? मैं ठीक, आप बताएं। और कहते हैं सॉन्ग सुनाइएगा। ओके, मैं कोशिश करती हूँ, लगाएंगे आपका गाना। अनवर कहते हैं पोएट्री अपने दिल में नफरत मत रखो, क्योंकि जिस दिल में नफरत होती है उसके दिल में अल्लाह पाक नहीं बसता। ओके, और चाचा खालिद जूनी जो हमारे साथ मौजूद है जी, वालेकुम अस्सलाम, कहते हैं How is your mood? And दिल का मौसम सिद्धो बेटा, होप वेल। जी जी अल्हम्दुलिल्लाह, सब कुछ ठीक ठाक अपनी जगह पर, आप बताएं कैसे हैं? और हैं जी आबिद परदेसी भाई हमारे साथ, आपको भी खुश आमदीद कहा जाता है। इखलाक बलोच हमारे साथ, नाइस यू, थैंक यू इखलाक भाई। अनवर भाई कहते हैं सिद्रा आज आपका मूड ठीक है। जी जी, और मोहम्मद अली खोसो में सुन रहे हैं, वालेकुम अस्सलाम, कहते हैं आप। अच्छा, यानी कि आपको मेरा प्रोग्राम पसंद आता है, थैंक यू जी, थैंक यू। और अब्दुल गफूर केसर हमारे साथ ही, वालेकुम अस्सलाम कहा जाता है। जरा पोस्ट को लाइक और शेयर करती रहिए। चाचा खालिद आपने गाने की फरमाइश करी है, मैं लगाने की कोशिश करूंगी। और रमजान अली हमारे साथ ही, वालेकुम अस्सलाम, इन मौला इस्लाम मदद कहा जाता है प्यारे भाई को। और साजिद हुसैन सुमरो हमारे साथ ही, साजिद हुसैन सुमरो, वालेकुम अस्सलाम, मौला इस्लाम मदद, आप हमें सुन रहे हैं मिठू देरो से, आपको भी वेलकम कहा जाता है। और हैं जी अब्बास अली नोहरियो, अब्बास अली कहते हैं शहबाज जान नोहरियो थर्ड पार्कर से आप हमारा शो सुन रहे हैं जी, वेलकम कहा जाता है। अयाज अली खास के लिए हमारे साथ मौजूद है, वालेकुम अस्सलाम। अशोक कुमार हमारे साथ है, हाय सिद्रा कैसी हो? आई एम अशोक कुमार। ओके जी, फ्रॉम दिल्ली इंडिया से अशोक कुमार हमें इंडिया से सुन रहे हैं, बहुत शुक्रिया, थैंक यू। और हैं जी गुलाम फरीद बलोच हमारे, वालेकुम अस्सलाम, आप कैसी हैं जनाब? आपका प्रोग्राम वेरी ब्यूटीफुल है, सॉन्ग सुना दीजिएगा। बिल्कुल जी, आपको ब्यूटीफुल सा गाना सुना देंगे। मोहम्मद जमान

0: ब्यूटी क्रीम का इस्तेमाल कर रहे हैं, क्या बात है। और हमारे साथ हैं यहाँ पर हाय सिद्रा, प्लीज प्ले सॉन्ग। हाय सिद्रा तो लिख दिया अपना नाम भी, नाम पास से प्रोग्राम सुन रहा हूँ। जबरदस्त सिद्रा, आपकी सारी टीम को सलाम। जी वालेकुम अस्सलाम, खुश आमदीद एंड बखैर अगले। और साथ ही साथ अगर आप हमारे साथ मौजूद हैं जी, जुड़ना चाहते हैं तो ज्वाइन करते जाइए, पोस्ट को लाइक और शेयर करते जाइए और टॉपिक को फॉलो करते रहिए। मैंने जो आज आप लोगों से सवाल पूछ लिया है तो जरा उसका जवाब बताइए ना। तो सवाल ये है कि आप मुझे बता रहे हैं कि दुनिया में सबसे ज्यादा पिज्जा जो है वो किस शहर के लोग खाते हैं। हाँ जी बताइए मुझे जल्दी से। और इसी के साथ साथ यहाँ पर टाइम हुआ जाता है, जरा हम शॉर्ट कमर्शियल ब्रेक की जाने जाते हैं, उसके बाद जल्दी से वापसी आप लोगों के पास आते हैं। आपने कहीं नहीं जाना, बस हमारे साथ मौजूद रहिएगा, सुनते रहिए और हमारा साथ दीजिए जो कि पूरी पूरी 3 बजे तक। मैं जरा यूं जाकर यूं वापस आती हूँ, सो स्टे ट्यून्ड, स्टे कनेक्टेड एंड कीप लिसनिंग व्हाइटिश एंड डी स्किन ब्यूटी शो, स्पॉन्सर्ड बाय व्हाइटिश ब्यूटी प्रोडक्ट्स एंड डी स्किन ब्यूटी प्रोडक्ट्स। लगाते रहिए ताकि आप भी खूबसूरत।
1: अपना शहर, अपना घर, मोरो और मोरो की आवाज, GFM 88।

0: हक सच जो आवाज, गीत संगीत जो आवाज, जे हैदराबाद मटियारी FM 91.6 सिंध जो आवाज, उधंदा रहो।
1: It's 1:30 PM. This time check is brought to you by
2: Heme Diamond Glow Bleach Cream. Kudrati jizan sa tayar kayal. Jekade kudrati nikhar. Saaf, naram ay roshan chehro. Heme Diamond Glow Bleach Cream.
3: Abhi budho.
1: It's 1:30 PM. This time check is brought to you by
2: Heme Diamond Glow Bleach Cream. Kudrati jizan sa tayar kayal. Jekade kudrati nikhar. Saaf, naram ay roshan chehro. Heme Diamond Glow Bleach Cream.
4: क्या आप आसाबी दर्द, जोड़ों की तकलीफ,
5: कमर दर्द या पट्ठों की सूजन से परेशान हैं?
4: अब दर्द को कहें अलविदा
5: फकीरी डेक्स ऑइंटमेंट के साथ।
4: जी हाँ,
5: फकीरी मरहम बनाने वालों की फखरिया पेशकश
4: फकीरी डेक्स ऑइंटमेंट।
5: ये ऑइंटमेंट
4: मुतासरा जगह पर आसानी से जज्ब होकर
5: दर्द, सोजिश
4: और अकड़न से आराम पहुँचाने में मदद देता है।
5: आसाबी दर्द, जोड़ों का दर्द,
4: गर्दन और कमर की तकलीफ,
5: पट्ठों के खिंचाव, मोच,
4: चोट, पुराने जख्मों के दर्द
5: और जल्दी जलन में मुफीद।
4: मुतासरा जगह पर दिन में 2 से 3 मर्तबा नरमी से लगाएं और सुकून का एहसास पाएं।
5: फकीरी डेक्स ऑइंटमेंट,
4: तेज आराम, मुआसर हिफाजत और काबिले एतमाद मयार।
5: हर अच्छे स्टोर से नाम लेकर तलब कीजिए।
6: अवां जी स्किन डल ऐं बेरोनक लगे थी, हाणे पंहिंजी स्किन खे ॾियो हिकु नओ गिलो। पेश आहे वाइट एश ब्यूटी क्रीम, अवां जी स्किन खे बणाए फ्रेश, सॉफ्ट ऐं ग्लोइंग। इन जो स्किन फ्रेंडली फार्मूलो ॾिए अवां खे रेडिएंट लुक रोज़ानो जे इस्तेमाल सां। हर क़िस्म जी स्किन जे लाइ परफेक्ट, हाणे थियो खूबसूरत थियण वधीक आसान। वाइट एश ब्यूटी क्रीम, खूबसूरती जेका चमके हर ॾींहुं। बहितरीन रिज़ल्ट हासिल करण लाइ वाइट एश ब्यूटी क्रीम सां गॾु इस्तेमाल करियो वाइट एश ब्यूटी सोप। वाइट एश ब्यूटी सोप सां मिले चमकदार निखार ताज़गी सां गॾु। वाइट एश ब्यूटी क्रीम, ग्लोइंग स्किन जो राज। अ प्रोडक्ट बाय बायोकॉन इंटरनेशनल पाकिस्तान।
3: अभी बुधो प्या जीए हैदराबाद मटियारी FM 91.6 सिंध जो आवाज।
7: ओ पिता जा पिताई पिता ते वसे नूर मुझो तो
3: सिंध जो आवाज़, बुधंदा रहो।

0: आप सुन रहे हैं DAFM 88 नेटवर्क सिंध की आवाज।
1: यार कुछ डीन खा चेल जो सूर जोड़न जी तकलीफ अया साबी दर्द एतरो वधी वियो आहे जो हलन फिरन भी दुखियो लगे थो।
2: तो पोए तू फकीरी डेक्स ऑइंटमेंट इस्तेमाल छो न तो करी?
1: इहा वाकई फायदे वारी आहे छा?
2: बिल्कुल, फकीरी डेक्स मरम मुतासिर थे हंद ते आसानी सा जजब थी, सूर आई सोडियम आराम पहुँचाण में मदद दे थी।
1: सिर्फ चेल ऐ सूर लाए
2: न दा, असाबन जो सूर, जोड़न जो सूर, कंध आई चेल जी तकलीफ, सट, धक लगन, पुराणन जख्म जे सूर आई चमड़ी जे जलन लाए भी फायदेमंद आहे।
1: इस्तेमाल किए कजे?
2: मुतासिर थे हंद ते डी में ब खां टे भेरा नरमी सा लगायो आई आराम जो एहसास हासिल करियो। जी हाँ, फकीरी डेक्स ऑइंटमेंट, सूर खां आराम, हर रोज हर कदम। अड़ी वेजे स्टोर ता नालो वठी खरीद करियो फकीरी डेक्स ऑइंटमेंट।
3: जिंदगी गुजारियो एतमाद सा कुरान के समझी बुधंदा रहो। डॉक्टर फरहत हाशमी जो प्रोग्राम तालीमुल कुरान रोजानो सुबह 9:55।
4: शानदार एलशनल 4 साल
5: लोगों को इस

तो ये चीज आके दोनों पर भाई ये चीज फिट हो कि आपने वाइटिश ब्यूटी प्रोडक्ट्स का कौन सा प्रोडक्ट परचेज करना है। तो आप अपने हिसाब से परचेज करेंगे जो भी आप प्रोडक्ट परचेज करना चाहते हैं, जैसे कि भाई आप लोगों के लिए बी है वाइटिश का फेस, और उसके अलावा डॉक्टर पिंपल एंटी एक्नी ट्यूब भी है। ये तमाम प्रोडक्ट्स हैं जो कि आप लोगों की खूबसूरती के मुताबिक तैयार की गए। तो अगर शुरुआत की जाए कौन से प्रोडक्ट्स से, तो मैं शुरुआत करूंगी डॉक्टर पिंपल एंटी एक्नी ट्यूब जो है ना, ये खास करके उन खवातीन के लिए तैयार किया गया है, उन मर्द हजरात के लिए तैयार किया गया है जो कि भाई अपने चेहरे के एक्नी की वजह से परेशान है। एक्नी यानी कि दाने अगर आपके चेहरे पर भी मौजूद है और दानों को खत्म करना चाहते हैं, ना सिर्फ दाने बल्कि आपके चेहरे पर जो दानों के निशानात हैं, कोई कट का निशान है, कोई जलने का निशान है, कोई इस तरह का निशान जो कि हमेशा से आप अपने चेहरे पर देखते आ रहे हैं, लेकिन आपको उसका सलूशन नहीं पता कि भाई ये कैसे दूर होगा, कैसे खत्म होगा, तो आपके पास डॉक्टर पिंपल एंटी एक्नी ट्यूब मौजूद है। ये जनाब इतना जबरदस्त प्रोडक्ट है ना कि यकीन जाने मैं खुद इस्तेमाल कर चुकी हूँ, और भाई मुझे ना ऐसा है कि जिसको भी मैं देखती हूँ जिसके चेहरे पर एक्नी और वो परेशान है बहुत ज्यादा, तो मैं कहती हूँ भाई आप मेरे कहने पर डॉक्टर पिंपल एंटी एक्नी ट्यूब का इस्तेमाल करके देखें। ये फुल जड़ी बूटियों से तैयार किया गया है, यानी कि इसके अंदर जड़ी बूटियां ऐड की गई है, आयुर्वेदिक फार्मूला है, और उसके इलाज पर जो एक्नी होती है ना उनसे एक्स्ट्रा ऑयल होता है, ओसिड्स हो, ब्लैक पोर्ट्स हो, या फिर एक्नी आपका किसी भी साइज का हो, यानी कि बहुत से लोगों के चेहरे पर कुछ छोटे छोटे एक्नी निकल आते हैं, कुछ चेहरे पर ऐसे होते हैं कि बड़े बड़े एक्नी निकल आते हैं, तो किसी भी तरह का एक्नी हो वो खत्म हो जाएगा जब आप डॉक्टर पिंपल एंटी एक्नी ट्यूब का इस्तेमाल करेंगे। और डॉक्टर पिंपल एंटी एक्नी ट्यूब को लगाने के क्या तरीकेकार हैं, तो लगाने के तरीकेकार थोड़े से मुख्तलिफ कह सकते हैं, क्योंकि जब आप इस्तेमाल करेंगे तो ऐसा होता है ना, सिर्फ आप रात के टाइम ही लगाना पसंद करते हैं या फिर सोचते हैं कि भाई जो क्रीमें होती हैं वो रात के टाइम लगाएंगे, तो पहली बात तो ये कि ये क्रीम नहीं है, ये एक ट्यूब है, और ये फुल जनाब आयुर्वेदिक फार्मूला भी है, और साथ साथ मेडिकेटेड फार्मूला भी है, डॉक्टर्स की निगरानी के अंदर भी तैयार किया गया है। और उसके अलावा इसे आप दिन में भी इस्तेमाल करेंगे, यानी कि सुबह को भी लगाएंगे और रात को भी लगाएंगे। अगर एक्नी बहुत ज्यादा है तो फिर आप 3 मरतबा लगा सकते हैं, यानी कि दोपहर में भी लगा सकते हैं। वैसे इसको लगाने के जो तरीकेकार हैं वो बहुत ज्यादा आसान है, और बहुत ज्यादा ऐसा सीन बनेगा कि जब आप डॉक्टर पिंपल एंटी एक्नी ट्यूब का इस्तेमाल कराने से पहले अपना फेस वॉश आप लाजमी कीजिए। यदि आप अपनाने के बाद आप लोगों को इतना कि एक्नी जो है ना वो कंटिन्यू इस चेहरे पर आए, यदि से गायब हो जाएंगे, एक्नी के निशान खत्म करना चाहे तो लाजमी करें इस जो अगर यही व्हाइटिश तैयार कयो आयो आहे, क्रीम के अंदर भी एवोकाडो व्हाइटिश भी एलोवेरा है, व्हाइटिश ब्यूटी सोप के अंदर भी एलोवेरा है, व्हाइटिश ब्यूटी क्रीम के अंदर भी मिल्क आहे, व्हाइटिश ब्यूटी सोप के अंदर भी मिल्क आहे, ही सफा मतलब एक ही सेम तरह से तैयार थियल आहे, तव्हांखे रिजल्ट भी सफा वीआईपी देण वारा आहिनि। तो जे मानू साबुन इस्तेमाल करना है तो हू व्हाइट एज जो ब्यूटी सोप लगाए सको था, तवाजी स्किन फ्रेश थी वेंदे, ग्लो ही ग्लो हों। उनका अलावा अगर तव चो था तो बाबा असा साबुन ना उन गाल सीधी आस फेस वॉश टेंशन चो था कर व्हाइट एज जो फेस वॉश भी मौजूद है। को फेस वॉश आए बाबा ही थोड़ो मुख्तलिफ आए, छो तो व्हाइट एज फेस वॉश के जो ना वाइटमिन सी से तैयार किया जो ना व्हाइट एज फेस वॉश है यो तुम इस्तेमाल करना था तुम्हारी स्किन जो ब्राइट एजिंग के लिए है, तुम्हारे सफाई खाइंदा रहन मुल्क तरक्की कंदो रहे, तो बिल्कुल अच्छी वह व्हाइट एज जो फेस वॉश तुम लाजमी ट्राई कर दिसो। उनका अलावा जो सो व्हाइट एज ब्यूटी क्रीम है, व्हाइट एज ब्यूटी क्रीम एक नाइट क्रीम आए, सो जी नाइट क्रीम हण वाला शौकीन जो इस्तेमाल करे, व्हाइट एज ब्यूटी क्रीम जो तुम्हारी स्किन जो फ्रेश रहंदी, ग्लोइंग रहंदी, तुम्हारी स्किन प्रोटेक्ट रहंदी उन तमाम चीजों का जो चीजों तुम्हारी स्किन के नुकसान पहुंचाई है, यानी कि तुम्हारी स्किन अगर खराब भी थी वही है तो तुम टेंशन न वो, व्हाइट एज ब्यूटी क्रीम जो इस्तेमाल कर तुम भी सोना सोना थी वनो, बेदाग तुम्हारी स्किन थी वे तुम सफा ग्लो कंदा वो। उनका अलावा लास्ट में असा बच्चों आए बाबा असो फेवरेट प्रोडक्ट जो नालो है अजीमो शान शहनशाह व्हाइट एज लवली क्रीम। हाँ यकीन जाने व्हाइट एज लवली क्रीम मेरे दिल के बहुत करीब है, क्योंकि ये एक ऐसा प्रोडक्ट है जिसकी भाई हर एक इंसान को नीड होती है, हर एक इंसान की जरूरत वाला प्रोडक्ट है। अगर आप भी व्हाइट एज लवली क्रीम का इस्तेमाल करना चाहते हैं तो पहले सुन लें कि व्हाइट एज लवली क्रीम के जो फायदे वो कितने ज्यादा है, और व्हाइट एज लवली क्रीम एक फेयरनेस क्रीम है, तो इसे आप दिन में इस्तेमाल करेंगे, रात में लगाएंगे जब आपका दिल करे तब लगाए, क्योंकि फेयरनेस क्रीम जो होती है ना वो ऐसे बस चुटकियों में आपको रेडी कर देती है। अगर आप भी ये सोच रहे हैं कि व्हाइट एज लवली क्रीम आप इस्तेमाल करेंगे तो क्या आपकी स्किन मुताबिक तैयार की गई है, तो बिल्कुल जी, व्हाइट एज लवली क्रीम जो कि रेडिएंट अल्ट्रा विटामिन्स का फार्मूला है जिसके अंदर 30 विटामिन्स कैप्सूल्स ऐड किए गए हैं, और उसके साथ साथ आप लोगों की स्किन का ख्याल रखते हुए इसके अंदर सनस्क्रीन भी ऐड की गई है, यानी कि ऐसा नहीं कि बस आप लोगों को सिर्फ खूबसूरती मिलेगी बल्कि ऐसा है कि आपकी खूबसूरती की हिफाजत भी होती रहेगी। तो अगर आप भी व्हाइट एज लवली क्रीम का इस्तेमाल करना चाहते हैं तो लाजमी कीजिए, कोई भी एज लिमिट नहीं है, यानी कि आप बच्चे हैं, बूढ़े हैं, जवान हैं, मर्द हैं, खवातीन हैं, हर कोई व्हाइट एज लवली क्रीम को इस्तेमाल कर सकता है। अगर आप कोई भी

जॉब कर रहे हैं, कोई भी काम कर रहे हैं, पढ़ते हैं, पढ़ाते हैं, कोई भी आप काम करते हैं और आपको जल्दी में सुबह सुबह रेडी होकर जाना पड़ता है काम पर, तो आप व्हाइट एज लवली क्रीम का थोड़ा सा मकदार अपने चेहरे पर इस्तेमाल कर लीजिए। आपकी स्किन ग्लो भी करती रहेगी, आपकी स्किन की हिफाजत भी होती रहेगी सूरज के इन खतरनाक असरात के साथ। तो बिल्कुल, अगर आप भी व्हाइट एज लवली क्रीम का इस्तेमाल करना चाहते हैं तो इस्तेमाल कीजिए, ताकि आप भी बन जाएं खूबसूरत और खूबसूरतियां आपको मिले वो वाली जो आप हमेशा से हासिल करना चाहते हैं। और अगर आप अपने करीबी जनरल स्टोर पर अवेलेबल कराना चाहते हैं तो जनाब डायल कीजिए 03125025907 या वरी तमा डायल कंदा 03327384309। ओके जी, सो जल्दी जल्दी से ये नंबर डायल करते रहिए ताकि आपकी खूबसूरती आपको मिलती रहे और आप भी ये सोचे कि भाई जान अब हम भी हसीन हो सकते हैं, क्योंकि अब हमारे पास व्हाइट एज ब्यूटी प्रोडक्ट्स आ चुके हैं। अपने करीबी जनरल स्टोर्स पर अवेलेबल कराइए, देर मत कीजिए और खूबसूरत हो जाइए। इसी के साथ साथ टॉपिक को फॉलो करते रहिए फेसबुक पर, जितने लोग हमारे साथ हैं पोस्ट को जरा लाइक और शेयर करते रहिए। बताइए आप हमारे साथ मौजूद हैं और कहां से ज्वाइन किया है ये भी बताइए।

जी भाई तोबा है, इतना हुस्न आपको मिल जाएगा कि लोग पूछेंगे आप सर आपने बताइएगा कि ये कमाल वाइट एज ब्यूटी प्रोडक्ट्स का है। इसी के साथ साथ अशोक कुमार भाई हमें सुन रहे हैं, कहते यू वेलकम जी, आपका शो सो नाइस, थैंक यू वेरी मच अशोक कुमार भाई। अनवर कहते हैं सॉन्ग सुनाए असा हथ मथे क्या सीन डाडोवा लगाने की जी कोशिश करेंगे। और हमारे साथ है वासु भाई कैसे है, ठीक ठाक। मोहम्मद जमान कहते हैं सुंदर कहा था, हाँ जी हाँ जी ठीक है, बहुत शुक्रिया। वो तो मैं हूँ। रिजवान अली हमारे साथ कहते हाय बहन कैसी आप, आपका शो वीआईपी है। रिजवान मरी मेहरापुर से हमारे साथ है, वेलकम जी, खुश आमदीद।

जी रिहाना हमारे साथ हैं बखर से, आप हमारा शो सुन रही है। रिहाना, आपको भी वेलकम कहा जाता है। मोहम्मद अली खोसो भाई कहते हैं मेरा सलाम दीजिएगा अयूब भट्टी बाबल खोसो को। ओके जी, रिजवान अली बलूच हमारे साथ हैं, हाय। अच्छा, दर्दी दिल हमारे साथ ही, वालेकुम अस्सलाम, कहती है कि चंदा जानी आप कैसी हैं, वेलकम टू शो, आपको भी वेलकम कहा जाता है। स्वीटी कहती माय फेवरेट आजे चंदा, हाँ जी। इकबाल लाशरी हमारे साथ ही, बाजी सवाल जवाब आहे। इटली में तो सब का वधिक पिज़्ज़ा ठयो वेंदो आहे, ऐं हा इहा ॻाल्हि बि आहे त जिते सब का वधिक पिज़्ज़ा ठयो वञे थो उहो सिटी त खाई कोन्हे थो, ऐं ॿियो हिकड़ो सिटी आहे उहो खाए थो। इहो छा लॉजिक आहे, इहो तव्हां ॿुधाईंदा मूंखे? सभु कुझु मां कोन ॿुधाईंदसि न। अनवर, तव्हां बि सवाल जो जवाब ॾिनो आहे। ओके जी, दर्द दिल हमारे साथ और कहती है। अच्छा, लॻती वक़्तु

ओके जी, बारी बारी जावा, लेकिन आप तो ये बताइए वाइट एज का कौन सा प्रोडक्ट इस्तेमाल कर रहे हैं? अच्छा साजिद हुसैन सुमरो कहते हैं शो आपका नाइस है, शमन का गाना लगाइएगा। बिल्कुल लगाते हैं। हैप्पी गर्ल कहती हैं आप कैसी हैं? मैं ठीक हूँ, आप बताएं आप कैसी हैं? अच्छा समीरो चौहान हमारे साथ हैं सर पार्कर से, आप हमारा शो सुन रहे हैं जी, आपको भी वेलकम कहा जाता है। और आबिद रसूल आबादी की तरफ से सब दोस्तों को अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। आई तवां की चौथा भली करी आया प्यारा भाव। कश्मोर से एक लाख भाई हमारे साथ ही, आपने टॉपिक का जवाब दिया है जो कि आप समझ गए होंगे कि आपका गलत जवाब है। अच्छा मीरपुर खास से अब्दुल्ला बहर कहती है अस्सलाम वालेकुम बाजी, व्हाइट एश ब्यूटी क्रीम जबरदस्त है, हाँ ना इस्तेमाल करती रहिए। और गोट हाजी गुलाम खास के लिए, लग झंडो मरी खां कुर्बान अली खास के लिए बाजी, काल सिस्टम रखे सॉन्ग अल्लाह दिनो जुनेजो का सुनाइएगा, मैं कोशिश करती हूँ आपकी पसंद का गाना लगाएंगे। और चाचा खाली जुनेजो कहते हैं कि टॉपिक आंसर ओके। मैं लास्ट में आपको बताकर जाऊंगी कि आप जो था वो दरअसल सही था। और हमारे साथ हैं चाचा खाले जुनी जो आपने गाना लिखा लगाने की कोशिश करेंगे जी। और उसके अलावा आबिद रसूल आबादी सभी दोस्तों के सलाम अदी किस्मत सा अर्ज कयो आप बरकत भट्टी जो गानो हलाए जो ओके भामा कोशिश क्या दी तांसी पसंद जो गानो तांके बुधराइंदासी मोहब्बत वाइन प्रोग्राम बुधो पया मोहम्मद जमान भरे जवाब क्या दे रहे हैं, मत करिए ऐसा भाई जान। और उसके अलावा जो है ना मतलब आप अपनी बुआ जी को चिढ़ा रहे हैं। तो ऐसा करते हैं यहाँ पर चाय मिल रही है और शादी गाती हूँ तो स्किन ब्यूटी प्रॉब्लम ये ताकि

0: It's 2 p.m. This time check is brought to you by
1: Flexi Cream. दर्द, सोजन, वरम फौरी खत्म. आज ही करीबी स्टोर से नाम लेकर तलब करें.
2: GAFM नेटवर्क पर.
3: नई वजीर है, घरू वजीर है, अमूल लाए, बेकयाम लाए, पुरो उम्मीद आयूं.

पेट्रोलियम डीलर्स एसोसिएशन तेल के अगन में रोजानी फेरफार करण वाले फैसले के रद्द कर छो। सुभाणे 24 कलाकन लाए पेट्रोल पंप बंद करण जो ऐलान। कराची में प्रेस कॉन्फ्रेंस कंदे पेट्रोलियम डीलर्स एसोसिएशन अगवाणन चयो आहे त पेट्रोल पंप सुभाणे सुबह 6 खां वगे सुबह जुमे सुबह 6 बंद रहंदा। हुकूमत पेट्रोलियम डीलर जा मसला हल करण लाइ तैयार न आहे। रोजानी बुनियाद ते पेट्रोल अगन में फेरफार वारो फैसलो बेकबूल न आहे।

0: आप सुन रहे थे GAFM नेटवर्क पर KTN न्यूज।
1: मटियारी के हो तो आवाज भी मटियारी की है, सुनते रहो GAFM 91.6।
2: यारे ही गोडन जो सूर है, चेल जो सूर तो मुझे जान ही करी छरिया है, हलण वेहण हर कम दुख्यो लगे थो।
3: तो पोई छा अन्या तई फकीरी एनल जैसे क्रीम इस्तेमाल न कई थी?
2: न यार, छा वाकई फायदो करे थी?
3: बिल्कुल अदा, कुदरती जुजन सा तैयार कैल फकीरी एनल जैसे क्रीम मुतासिर हंदा ते जल्दी जजब थी। सूर सोडिय जिस्म जी नसन जी छिक आई अकराहट मां आराम पहुंचाने में मदद करे थी। चेल जो सूर हुजे, गोरन जो सूर, कंध आई कुलन जी तकलीफ या वर्जिश का पोए छिक हर हालत में बेहतरीन साथी। फकीरी एनल्जेसिक क्रीम
2: इस्तेमाल किए कजे,
3: रुगो मुतासिर हंद ते डीह में 3-4 भेरा नरमी सा लगाए आई आराम जो एहसास वच आई बुध। जेकर उमरे या हज ते वन जो इरादो अथई त फकीरी एनल्जेसिक क्रीम जरूर पान सा गड खणी वंजा।
2: वाह, पोए अज ही वठींदस।
3: फकीरी एनल्जेसिक क्रीम अज ही पंहिंजे वेझे मेडिकल स्टोर तां नालो वठी खरीद करियो।
4: हक सच जो आवाज, गीत संगीत जो आवाज, जे हैदराबाद मटियारी FM 91.6, सिंध जो आवाज, बुधंदा रहो।

मोहब्बत चांद होती है, मगर ये जान लेने में हमें एक उम्र लगती है। कभी जब जान जाते हैं तो फिर ये जान जाती है। ये दुनिया जीत जाती है, मोहब्बत हार जाती है।

0: देखिए ड्रामा सीरियल मोहब्बत और महंगाई रोजाना रात 7 बजे सिर्फ ग्रीन एंटरटेनमेंट पर।
1: हर दिन हर पहर जिंदगी की लहर GFM 88 नेटवर्क सिंध की आवाज़।

0: It's 2:15 PM.
1: This time check is brought to you by
2: D Skin Beauty Cream. Asli Glow Har Diya Josho. A product by Biocon International Pakistan.
3: GA FM 88.
4: Sindh ki awaaz.
5: Okay, जी सो वापस आ चुके हैं दोबारा से आप लोगों के पास और आप सुन रहे हैं ZFM 88 नेटवर्क. हमारे साथ हैं जनाब सखर मोरो मीरपुर खास मटियारी सखरन मीरापुर मातली और लाड़काना के लाइव स्टूडियो से. आपकी सिद्ध आपके साथ मौजूद है. मेरे साथ कौन है मुझे बताएं ना, कहां से हमारे साथ मौजूद है, किस किस सिटी से हमें सुन रहे हैं, किस किस गांव से हमारे साथ है और इसके अलावा कहां कहां पर व्हाइटिश ब्यूटी प्रोडक्ट्स एंटी स्किन ब्यूटी प्रोडक्ट्स अवेलेबल है. ओके जनाब, सो आप लोगों को वेलकम एंड खुश आमदीद कहा जा रहा है. प्रोग्राम का दूसरा घंटा आ चुका है. प्रोग्राम के दूसरे घंटे में हमने कदम रख लिया और इसी के साथ साथ यहां पर जो मैंने आज आप लोगों से सवाल पूछा है तो वो जरा दोबारा से रिपीट कर लेते हैं ताकि आप लोगों में से जितने लोगों ने अभी अभी सुनाया स्टार्ट किया तो उनको भी पता हो. तो आज मैंने आप लोगों से पूछा है कि आप मुझे बताएं कि दुनिया में सबसे ज्यादा पिज्जा किस शहर के लोग खाते हैं, यानी कि कौन सा शहर है जहां पर पिज्जा जो है वो सबसे ज्यादा खाया जाता है. ओके जी, सो जल्दी से मुझे बताइए और शामिल प्रोग्राम होने के लिए 888 और फेसबुक पर आप मुझे ज्वाइन करते जाएंगे.

साईं छायो मुमकिन आहे आहे आहे प्रोग्राम सुन रहे हैं वाइटेश एंड डी स्किन ब्यूटी शो. स्पॉन्सर्ड किया जा रहा है वाइटेश ब्यूटी प्रोडक्ट्स एंड डी स्किन ब्यूटी प्रोडक्ट्स के तावन से. अच्छा हमारे साथ यहाँ पर पैनल की जाने बातें हैं तो कौन कौन मौजूद हैं. अरिबा कहती है ओ मेरी प्यारी आपी

ओके जी, सोनी कहती आप ही जान में भी आ गई, आप ही सुबह कब होगी, आप ही कल के दिन का बेसब्री से वेट कर रही हूँ। अगर आप इंतजार करें तो आपको आज का दिन बहुत बड़ा लगेगा, गुजरेगा ही नहीं। तो वेट करना चाहती हैं तो क्योंकि मुझे ये लगता है कि जब मैं ऐसा लगता है कि मैं किसी चीज का वेट कर रही हूँ लेकिन मेरा दिन नहीं गुजरा तो फिर मैं सो जाती हूँ। सोने के बाद हमें ऐसा लगता है कि हाँ जी अब जो वक्त है वो तेजी से गुजर। शाह बबर की आवाज में हमने यहाँ पर गाना, शाह जमाने मूसा घट गई हुई जो तू भी निकली आए।

छोकिरी इशा बेबर जो ही वारो गानो मतलब जेको आ न काफी टाइम खा मुखे इलाही सुठो लगंदो आ अलाई छो सुठो लगंदो आ त मतलब ही गानो बुधी करे मुखे एहसास थिंदो आ त जेके असानी जिंदगी में प्यारा मानू हुंदा आइन प्यार करे उही मानू असान तो ई न कंदा कयो कुछ चीज अगर असान कोशिश करी बा डाडो दुखियो ते विजो पर हमारे साथ मौजूद है कहते हैं सलाम गुड आफ्टरनून ब्रेक मोटी ना।

0: यार कुछ ॾींहनि खां चेल जो सूर, जोड़नि जी तकलीफ़ ऐं असाबी दर्द एतिरो वधी वियो आहे जो हलण फिरण बि ॾुखियो लॻे थो।
1: त पोइ तूं फ़क़ीरी डेक्स ऑइंटमेंट इस्तेमाल छो नथो करीं?
0: इहा वाकई फ़ाइदे वारी आहे छा?
1: बिल्कुल, फ़क़ीरी डेक्स मरहम मुतासिर थियल हंध ते आसानी सां जज़्ब थी सूर ऐं सोडियम मां आराम पहुचाइण में मदद ॾिए थी।
0: सिर्फ़ चेल ऐं सूर लाइ
1: न दा, असाबनि जो सूर, जोड़न जो सूर, कंध ऐं चेल जी तकलीफ़, सट, धक लॻण, पुराणनि ज़ख़्मनि जे सूर ऐं चमड़ीअ जे जलन लाइ बि फ़ाइदेमंद आहे।
0: इस्तेमाल कीअं कजे?
1: मुतासिर थियल हंध ते ॾींहं में 2 खां 3 भेरा नरमी सां लॻायो ऐं आराम जो अहसास हासिल करियो। जी हाँ, फ़क़ीरी डेक्स ऑइंटमेंट, सूर खां आराम, हर रोज हर कदम। अॼु वेझे स्टोर तां नालो वठी ख़रीद करियो फ़क़ीरी डेक्स ऑइंटमेंट।
2: जिंदगी गुज़ारियो एतमाद सां, कुरान खे समझी ॿुधंदा रहो। डॉक्टर फरहत हाशमी जो प्रोग्राम तालीमुल कुरान रोज़ानो सुबुह 9:05 ते सिर्फ़ GFM 88 नेटवर्क ते।
3: अपना शहर, अपना घर, मटियारी और मटियारी की आवाज़
4: GFM 91.6।

स्वामी जी वापस आ चुके हैं दोबारा से आप लोगों के पास और आप सुन रहे हैं जीएफएम 88 नेटवर्क। मौजूद हमारे साथ सखर मोरो मीरपुर खास मटियारी सकरन मेहरापुर मातली और जनाब लाड़काना के लाइव स्टूडियो से आपकी सिद्धराव के साथ। और जी मेरे साथ कौन कौन है, कहां कहां से आप हमें सुन रहे हैं बताइएगा। और हम आ चुके हैं प्रोग्राम के लास्ट लिंक में, तो आप लोगों को वेलकम एंड खुशामदीद कहा जाता है। बिल्कुल जी, आपकी मोहब्बतों समातों और चाहतों का बेहद वाला शुक्रिया।

गाना कितना सुंदर है सुनकर, मतलब बड़ा अच्छा लग रहा है, समझ नहीं आ रहा वो अलग बात है लेकिन अच्छा लग रहा है सुनकर। तो बिल्कुल जी, प्रोग्राम में आप लोग हमारे साथ मौजूद हैं, आप लोगों को बताया जाता है वाइटिश ब्यूटी प्रोडक्ट्स हो या फिर डी स्किन ब्यूटी प्रोडक्ट्स हो, तो अगर आप डी स्किन ब्यूटी प्रोडक्ट्स का इस्तेमाल करना चाहते हैं तो सबसे पहली बात तो ये आज आप जनरल स्टोर्स पर मिलने चाहिए। उसके अलावा अगर आप भी चाहते हैं कि हमारे करीबी जनरल स्टोर्स पर भी मिले तो आपके लिए नंबर है जो कि प्रोग्राम में बताती हूँ ताकि आप अपने करीबी जनरल स्टोर्स पर अवेलेबल करा सके और आपको आसानी हो। अगर आप भी अवेलेबल कराना चाहते हैं तो नंबर है जनाब 03 12 50 25 907 या फिर दूसरा नंबर है 03 32 73 84 309। ये नंबर है जो कि आपकी आसानी के मुताबिक है ताकि आप इन्हें डायल कर सके और इनसे मालूमात ले सके, वो मालूमात जो आप लोगों को शायद मुझसे नहीं मिलती। और इसके साथ साथ अगर आप भी अपने करीबी जनरल स्टोर्स पर अवेलेबल कराना चाहते हैं तो जल्दी से अवेलेबल कराइए। और अगर आप भी डी स्किन ब्यूटी क्रीम का इस्तेमाल करना चाहते हैं तो डी स्किन ब्यूटी क्रीम अवेलेबल कराइए, दिन आप इस्तेमाल कीजिए। और डी स्किन ब्यूटी क्रीम की अगर हम बात करें

क्या बात है जी. डी स्किन ब्यूटी क्रीम अगर आप भी इस्तेमाल करेंगे तो जरूर कीजिएगा. डी स्किन ब्यूटी क्रीम के बारे में ये बात दी है कि जब आप डी स्किन ब्यूटी क्रीम का इस्तेमाल करेंगे तो ये फुल मेडिकेटेड फार्मूला है, यानी कि इसे इस्तेमाल करते साथ आप लोगों को ये नहीं लगेगा कि भाई आप कोई ऐसा प्रोडक्ट लगा रहे हैं जिसे लगाने के बाद आपकी स्किन मजीद खराब हो चुकी है. ना बिल्कुल नहीं, ऐसा कोई सीन नहीं होगा, क्योंकि डी स्किन ब्यूटी क्रीम डॉक्टर्स की निगरानी के अंदर तैयार किया हुआ प्रोडक्ट है. आप बेफिक्र होकर लगा सकते हैं चाहे आपकी स्किन कितनी सेंसिटिव क्यों ना हो. ओके जी, सो डी स्किन ब्यूटी क्रीम के साथ आप डी स्किन फेस वॉश का भी इंतखाब करेंगे. दोनों चीजें साथ में लगाइएगा. और इसी के साथ साथ मैंने जहाँ पर आप लोगों से जो सवाल पूछा है टॉपिक प्रोग्राम का ये है कि आप मुझे बताएं कि दुनिया में सबसे ज्यादा पिज्जा जो है वो किस शहर में खाया जाता है, किस शहर के लोग जो है वो सबसे ज्यादा पिज्जा खाते हैं. और उसके साथ साथ

ओके तो बहुत ही खूबसूरत सा गाना यहाँ पर आप एंजॉय कर रहे हो. साथ साथ ये गाना डेडिकेट जाता है अली मुर्तजा के नाम. ओके जी अली मुर्तजा क्या ही बात की आपके जो कमेंट है. वैसे वो ड्रामा मैंने देखा नहीं लेकिन ड्रामे की थोड़ी सी क्लिप्स देखी थी. उसमें ये पता चला था कि वाकई डिलीवरी बॉय होता है उस पर उसका दिल आ जाता है. सही है भाई शुरू करें अभी. नेकी और पूछ पूछ नजीबुल्ला बिरोही हमें सुन रहे हैं. हाय हेलो मैं ठीक हूँ आप बताएं कैसे हैं. ओके जी ओके मुझे बात समझ आ गई. और मोहम्मद जमान कहते हैं बुआ क्या भाई आप ऐसा कीजिए मोहम्मद समान आप डी स्किन का फेस वॉश जो है ना वो लगा के देखिएगा. सच्ची मुझे बता रही हूँ बहुत कमाल का फेस वॉश है. जब आप इस्तेमाल करेंगे तो आपको अंदाजा हो जाएगा इस बात का. और मुश्ताक अच्छा मुश्ताक बलोच हमारे साथ आपको भी वेलकम कहा जाता है.

अरे भाई जवाब बताने कितनी जल्दी क्या है बताऊंगी, अभी तो टाइम पड़ा है, रुको जरा सब्र करो। यूनिस खुड़ू हमें सुन रहे हैं, कहते हाय अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम अस्सलाम। रमजान लिखते हैं कि कहते तो जो दिल क्या चीज है, जान भी लुटा देंगे। आज कहते हैं छोड़ दो हाथ, मेरी इज्जत का सवाल है। वाह साईं वाह। अच्छा ये किशोर भाई हमारे साथ, कहते सलाम अदा की आयो, खुश चाक चंगा भला डियो, खबर सब खैर ता है, सब खैर मजे में ता बुदाय, घुमी फिरी मजा करी आयो। अच्छा दर्दे दिल कहती चंदा कल से इतनी सीरियस बातें क्यों कह रही हैं? नहीं मैं तो ठीक ठाक हूँ, वैसे क्या है कि कभी कभार इंसान को थोड़ा सीरियस भी होना चाहिए। और ये मैंने गाना लगाया है जी बरकत अली की आवाज़ में।

ओके जी कारे वगे सा दिला पांजी उनडी मैं एकड़ी रील दिठी जे मैं एकड़ो मानू चे पियो त चवन था त कारो वगो लहे न थो असायो जके कारो वगो ठहे न थो वा चीज वाकई थोड़ी लगी त कुछ कुछ मानन के कारो वगो वाकई नाय ठहंदो कुछ मानन के वरी डाडू ठहंदो आ सो गाल ते ठण जी नाय पर कुछ मानो वरी आशकी जे तौर ते कारो वगो पाइंदा है सो खैर कारो वगो पाइण जो शौक थे तो डी स्किन ब्यूटी क्रीम लाजमी हण जो ठीक है तागे ठहे कारो वगो ओके जी डी स्किन ब्यूटी क्रीम तहां के मिले थी गड तहां के डी स्किन जो फेस वॉश भी मिले तो आने तमा ते त बई चीजू लगाया था या जेका दिल चवा चवे तमा जी सा तमा लगाए सको था और किशोर भाई के अदा घबरान आओ आ गया हूं भलो कयो तव और हे जी हमारे साथ ये हैप्पी गर्ल क्या कहती है मैं आपके शो की दीवानी हूं मतलब आपके लिए पागल हूं सच्ची बताएं अच्छा ए मंसारी कहते ऑरेंज कलर वाली ये कारे दिल ना करे भाई आ? दिल को संभाल के रखे सर अच्छा दिल के संभाले रखो बाबा संभाले रखो कम ही दव अच्छा मोहम्मद रहीम राजड़ हमारे साथ हैं वालेकुम अस्सलाम प्रोग्राम तुम्हारे वणे पयो थैंक यू और अली मुर्तजा के थे सेम हियर पीटीवी का वो दौर मेरे टाइम में एटीवी आ चुका था और एटीवी पर ये ड्रामे गाने चलते थे शाम के टाइम पर एक शो चलता था उसका पता नहीं क्या नाम था थोड़ा अजीब सा नाम था अजीब सा मतलब डिफिकल्ट था याद नहीं रहा तो वो हम देखते थे वो पसंद होता था शुरू से बचपन से मुझे गाने सुनना और देखना बड़ा पसंद था

राजा कहते हैं डी स्किन क्रीम का फेस वॉश कमाल, यू कैन सी इन माय डीपी। ओके जी चाचो तो सफा हीरो लगो पे हुआ। वाह वाह वाह वाह चाचा ईअं बाबा डी स्किन जो फेस वॉश हणो ऐं डी स्किन जी हाणे क्रीम बि हणण स्टार्ट कयो समझो था। अच्छा हैप्पी गर्ल कहती है मैं कभी कभी आपको मैसेज ना करूं तो आप समझ जाना कि मैं आपका प्रोग्राम शामिल नहीं हो पा रही, लेकिन आप समझ लेना कि मैं आपका शो सुनती हूं। ओके जी ओके हम समझ लेंगे यही बिल्कुल जो आपने बोला और बहुत शुक्रिया आप हमारे साथ। और उसके साथ साथ अगर आप भी चाहते हैं कि आपके करीबी जनरल स्टोर पर डी स्किन ब्यूटी क्रीम और डी स्किन का फेस वॉश अवेलेबल हो तो जो नंबर आपको बता रहे हैं उनके ऊपर रब्ता किया करें, कॉल या फिर एक छोटा सा मैसेज छोड़ दिया करें, उनको बताएंगे भाई आप कहां से हैं और आप शो सुनते हैं, आपके एरिया में नहीं मिलते ये प्रोडक्ट तो वो अवेलेबल करा देंगे, उनके लिए भी आसानी हो जाएगी और आपके लिए भी आसानी हो जाएगी। तो थोड़ा सा आप जो है ना कोशिश करें कि ये नंबर जो आपको बताए जा रहे हैं उनके ऊपर रब्ता करें, कॉल या फिर मैसेज आप जरूर किया करें। और सोनी कहती हैं आप ही वाह साई वाह वाह साई वाह यानी फुल मजे में एंजॉय करना। और ये अदी सिद्रा में आफ्ताब अहमद मक्सी, अदी प्लीज सॉन्ग फायजा अली का सुनाइएगा मिल सोहना, डेडिकेट आपने किया है मेरी जान ए के नाम। चले ये गाना अगर अभी नहीं चल सका, वैसे अभी नहीं चलेगा, 5 बजे वाले प्रोग्राम में आपको सुनाऊंगी ठीक है, आप 5 बजे मुझे ज्वाइन कीजिएगा। अच्छा वरियाम अली जतोई हमारे साथ मौजूद है, कहते सलाम था कई प्यारे शो में अवां के, वालेकुम अस्सलाम। हाँ सोनी मैं समझ गई। और विलेज मोहम्मद पंजल शर से ममताज अली शर के वीआईपी प्रोग्राम हले पो तवाजो, थैंक यू भाई।

जी बहुत ही प्यारा गाना सुन रहे हैं यहाँ पर। हैप्पी गर्ल कहती है लाड़काना में तो मिलता ही ना प्रोडक्ट। हाँ जी बिल्कुल, लाड़काना में आपको कहीं से भी जाएंगी तो आपको मिल जाएगा। और उसके अलावा जी जी बिल्कुल सवाल का जवाब बताती हूँ। और इखलाक भाई कहते हैं जी स्किन का क्या कमाल है। जी जी शायद कुछ ऐसा ही सीन है, लेकिन आप डी स्किन ब्यूटी क्रीम इस्तेमाल जरूर कीजिएगा। किशोर भाई कहते हैं खुद को आजमा के हम नहीं रोएंगे। भाई रोना भी नहीं चाहिए, खुद को आजमा के क्यों ही रोएंगे। कुछ बातें वाकई ऐसी होती हैं जो समझ नहीं आती, और हम हैं कि समझना चाहते भी नहीं। ओके सो मैंने जो आज आप लोगों से सवाल पूछा था कि दुनिया में सबसे ज्यादा जो पिज्जा है वो किस शहर के लोग सबसे ज्यादा खाते हैं, तो उसका सही जवाब है न्यूयॉर्क के जो लोग हैं ना वो पिज्जा सबसे ज्यादा खाते हैं। दुनिया में मतलब एक ऐसा सिटी बन चुका है न्यूयॉर्क जो दुनिया में सबसे ज्यादा पिज्जा खाने वाला जो ना वो सिटी है, तो न्यूयॉर्क इसका सही जवाब है। अब आप देखेंगे किसने सही जवाब दिया किसने नहीं, मैं नहीं बताऊंगी कि किसने सही दिया किसने नहीं। ओके इसी के साथ यहाँ पर टाइम भी हो जाता है कि आप लोगों से इजाजत ली जाए, हमारे जाने का वक्त आ चुका है ना, क्या करें।

0: ओके जी, क्या बात है। ये हमारे साथ है शम्सुद्दीन भाई, वालेकुम अस्सलाम। आप हमें सुन रहे हैं, प्रोग्राम इज वेरी गुड, थैंक यू जी। आपको खुश आमदीद कहा जाता है। डी स्किन ब्यूटी क्रीम का इस्तेमाल लाजमी कीजिएगा, और डी स्किन ब्यूटी क्रीम आप इस्तेमाल करेंगे तो आपको पता चलेगा कि वाकई कितने अच्छे प्रोडक्ट है। तो इस्तेमाल करते रहिए और अपनी सेंसिटिव स्किन के ऊपर लगाइएगा, ताकि आपकी जो सेंसिटिव स्किन है उसको भी जरा राहत मिले और आपके चेहरे पर सुकून आ जाए, और आपके चेहरे पर जो एक्नी है, मसाले, वो सारे दूर हो जाए और आपकी खूबसूरती आपको मिल जाए। इसी के साथ वरी मिल रहा था तमाम पंची बजे वाली प्रोग्राम में, और सादा जो दुनिया में सबसे ज्यादा कम पिज्जा खाने वाला मैं हूँ। माँ भी घट खाएंगी, घटिशा मतलब समझो खाएंगी ना, पिज्जा मुख्य ना वो को दो रो घो खाधोसी, पर चवंदा ना खाई खाई वरी इंसान बेजार थी वो आई गाल। तो पंजे बजे मिलूं था वरी तवहां ज्वाइन कंदा, इन का अलावा किथे का गलती थी हुए तो माजरत कयूं था, फीडबैक रहिजी वया तो माजरत कयूं था, मैसेज रहिजी वया तो माजरत कयूं था, गाना रहिजी वया तो माजरत कयूं था। तो मोकलानी ना है बाबू सिन सलामत सा सलामत अल्लाह हाफिज, बाय बाय, लव यू ऑल एंड टेक केयर।
1: अब आप सुनेंगे जीएफएम नेटवर्क पर केटीएन न्यूज़।

0: अमेरिका जा ईरान ते 11 ॾींहं बि हमला। ईरानी शहर तेहरान, तबरेज़, सीरक ऐं ॿियनि सामूंडी इलाइक़नि निशानो बणायो वियो आहे। अमेरिकी सेनेट खां मौजूद ताज़नि हमलनि जो मक़सदु ईरान जे बहिरी जहाज़नि ख़िलाफ़ सलाहियतनि खे कमज़ोर करण हो। ईरानी फ़ौज जा बि जवाब में अमेरिकी ख़िते में मौजूद अमेरिकी अॾनि ते हमला। पासदार इनकलाब मूजिब उर्दन ऐं बहरीन में अमेरिकी फ़ौजी अॾनि खे ड्रोन ज़रिए निशानो बणायो वियो आहे, जंहिं जे नतीजे में अमेरिकी फ़ौज जो वॾो नुक़सान थियो आहे।
1: पाकिस्तान जे दौरे ते मौजूद ईरानी घर वज़ीर इस्कंदर मोमनी जी घर वज़ीर मोहसिन नक़वी सां मुलाक़ात, बेतरफ़ लाॻापनि समेत खिते जी सूरतहाल ते ॻाल्हियूं। अफ़गान सरहद तां मंशियात ऐं दहशतगर्दी रोकण जे लाइ गॾियल मौक़िफ़ इख़्तियार करण ते ज़ोर भरियो वियो। सहकार खे वधीक बहितर करण जे लाइ कोआर्डिनेशन वधाइण जो बि फ़ैसिलो। मोहसिन नक़वी चयो त पाकिस्तान समूरनि शोबनि में ईरान सां सहकार वधाइण जे लाइ तयार आहे। ईरान जे परे वज़ीर ऐं घर वज़ीर अमन जे लाइ बहितरीन कम कयो आहे। जल्द अमन जे क़याम जे लाइ पुरउमीद आहियूं।

0: पेंटागोन ईरान खिलाफ जंग लाइ सेनेट खां वधीक 87 अरब डॉलर घुरी वरिता। अमेरिकी दिफ़ा वारे वज़ीर सेनेट कमेटीअ खे आगाही ॾींदे चयो त ईरान खिलाफ़ जंग में हिन वक़्त ताईं 37 अरब डॉलर ख़र्च थी चुका आहिनि। पेंटागोन खे वधीक 87 अरब डॉलर घुर्बल आहिनि, जिन मां 67 अरब डॉलर विच ओभर में जंगी कार्रवाईनि लाइ तयार रखिया वेंदा। पेट हेग 7 जा ब्रीफिंग दौरान डेमोक्रेट सेंटर्स सां सख़्त जुमलनि जी ॾेवट बि थी। डेमोक्रेट सेंटर्स हेग 7 खे नाकाम वज़ीर बि करार ॾिनो।
1: नाणे वारे वफ़ाक़ी वज़ीर मोहम्मद औरंगज़ेब जी वॉशिंगटन में अमेरिकी हमनसब सां मुलाक़ात। वापारी सहकार वधाइण ते इतफ़ाक़, सीड़पकारी ऐं बरामदात वधाइण ते ज़ोर भरियो वियो। नाणे वारी वज़ारत मूजिब मोहम्मद औरंगज़ेब अमेरिकी हमनसब स्कॉट बेंसेट सां मुलाक़ात कई आहे। नाणे वारे वज़ीर अमेरिकी हमनसब खे

0: दौरान 70 दहशतगर्द मारजी वया। मस्तोंग में ऑपरेशन दौरान 3 दहशतगर्दन के जहनम भेड़ो कयो वयो। भारतीय फितने जे ब आपघाती बमबार औरतन सहूलतकार के भी गिरफ्तार कयो वयो।
1: मटियारी के हो तो आवाज भी मटियारी की है, सुनते रहो GAFM 91.6।
2: यार कुछ डियन खां चेल जो सूर जोड़न जी तकलीफ अया साबी दर्द इतरो वधी वियो आहे जो हलन फिरन भी दुखियो लगे थो।
3: तो पोई तू फकीरी डेक्स ऑइंटमेंट इस्तेमाल छो नथो करी?
2: इहा वाकई फायदे वारी आहे छा?
3: बिल्कुल, फकीरी डेक्स मरम मुतासिर थियल हंध ते आसानी सां जज़्ब थी सूर ऐं सोडियम मां आराम पहुचाइण में मदद ॾिए थी।
2: सिर्फ चेल ऐं सूर लाइ
3: न दा, असाबन जो सूर, जोड़न जो सूर, कंध ऐं

0: चेल जी तकलीफ़ सट धक लगण पुराणन जख्म जे सूर ऐं चमड़ीअ जे जलन लाइ बि फ़ाइदेमंद आहे।
1: इस्तेमाल कीअं कजे?
0: मुतासिर थियल हंध ते ॾींहं में 2 खां 3 भेरा नरमी सां लॻायो ऐं आराम जो अहसास हासिल करियो। जी हाँ, फ़क़ीरी डेक्स ऑइंटमेंट, सूर खां आराम हर रोज हर कदम। अॼु वेझे स्टोर तां नालो वठी ख़रीद करियो फ़क़ीरी डेक्स ऑइंटमेंट।
2: हक सच जो आवाज़, गीत संगीत जो आवाज़, जीए हैदराबाद मटियारी FM 91.6 सिंध जो आवाज़, ॿुधंदा रहो।

0: मोरे पिया, 20 से जुम्मा रात 9 बजे सिर्फ ग्रीन एंटरटेनमेंट पर।
1: हक सच जो आवाज, गीत संगीत जो आवाज, जीए हैदराबाद मटियारी FM 91.6, सिंध जो आवाज, उदंदा रहो।
2: सुबह की चाय या ट्रैफिक का जाम, हर पल फन, GFM बदलती लाइफ की ट्रेजेडी।
3: yeah!

0: जिस धरती से जुड़ा है कलंदर लाल शहबाज,
1: उसी खित्ते की बनी है आवाज।
0: जीए FM नेटवर्क,
1: सिंध की आवाज।

0: हक सच जो आवाज, गीत संगीत जो आवाज, जे हैदराबाद मटियारी FM 91.6, सिंध जो आवाज, बुदंदा रहो, बुदंदा रहो।
1: सुबह की चाय या ट्रैफिक का जाम, हर पल फन, GFM बदलती लाइफ की ट्रेजेडी।
2: Yeah!

हक सच जो आवाज, गीत संगीत जो आवाज, ये हैदराबाद मटियारी FM 91.6 सिंध जो आवाज, उधर ना रहो।

0: जिस धरती से जुड़ा है कलंदर लाल शहबाज,
1: उसी खित्ते की बनी है आवाज।
0: जीए FM नेटवर्क,
1: सिंध की आवाज।

करण जो ऐलान। कराची में प्रेस कॉन्फ्रेंस कंदे पेट्रोलियम डीलर्स एसोसिएशन के अगवान चवाए तो पेट्रोल पंप सुभाने सुबह 6 बजे का जुमे जो सुबह 6 बजे तक बंद रहंदा। हुकूमत पेट्रोलियम डीलर्स जो मसला हल करने के लिए तैयार ना है। रोजानी बुनियाद पे पेट्रोल अघन में फेरफार वालों फैसलो भी कबूल ना है।

0: पंजाब में बरसातुनि तबाही मचाए छॾी। शहरनि जा रोड नदियूं बणिजी विया। लाहौर, सियालकोट, गुजरात, गुजरांवाला में तेज़ बरसातुनि बाद रोडनि ते गोॾे जेॾो पासंज ॼणा फौत ऐं केतिरा ई ज़ख़्मी थिया। ख़ैबर पख़्तूनख़्वा में बि बरसातुनि दौरान 19 ॼणनि जे फौत थियण जी तसदीक थी वई। खारजी दहशतगर्दनि जी सहूलतकारी में मुलविज़ मौलवी ज़फ़र याब गिरफ़्तार। हुकूमत रोशराब करे वरितो। मूजिबि भतेखोरी बाबति मुकदमा हासिल कंदो हो ऐं खारजनि जो इस्लाम सां को बि तालुक नाहे।
1: असांजो जेको आहे ख़तम कयूं, असांजो सर्विस स्ट्रक्चर नाहे, असांजी पेंशन बंदि कई आहिनि ऐं हुन खां अलावा जेको असांजी अखर आईडी रहिजी वई। सभ खां वॾो मसलो असांजी जेकी बजट हिननि कटी आहे उहा हिकिड़ी निजी कंपनी में हिननि ॾेई छॾी आहे। त हिननि असां खां पुछियो तव्हांजो नुक़सान छा आहे। असां हिननि खे ॿुधायोसीं असांजी प्रमोशन न थींदी, असांजी ग्रेजुएशन न थींदी, असांजी पघार न वधंदी। नरेंद्रदास जेसि ताईं असांखे मुतमिन न कयो वेंदो, असांखे को अहिड़ो डॉक्यूमेंट न ॾिनो वेंदो जंहिंमें असां मुतमिन थियूं।
0: कराचीअ में सिंध सेक्रेटेरिएट साम्हूं सूबे जे मुख़्तलिफ़ शहरनि खां पहुतल लेडी हेल्थ वर्कर्स धरणे में शरीक। पीपीएचआई में ज़म करण वारो हुकूमती फ़ैसिलो रद्द करे छॾियो। लेडी हेल्थ वर्कर्स चवे त सिंध हुकूमत पघारूं बंदि करे छॾियूं आहिनि, पघारूं जारी कयूं वञनि।

0: सोलर ऐं बैटरी ते डायरेक्ट हले ऐं बाक़ी तमामु पखनि जे मुक़ाबले में टे ज़बरदस्त हवा। रॉयल इनवर्टर फैंस साथ सिंध।
1: आप सुन रहे थे जीए एफएम नेटवर्क पर केटीएन न्यूज।
2: काश हमारे पास जैसी गाड़ी होती चमचमाती भी।
3: चलो दिल को संभाल के रखो दुल्हन, ये ना हो कि गाड़ी के चक्कर में तुम्हारा ये ड्राइवर के हाथ से निकल जाए।

0: हक सच जो आवाज, गीत संगीत जो आवाज, जे हैदराबाद मटियारी एफएम 91.6, सिंध जो आवाज, बुदंदा रहो।
1: जिस धरती से जुड़ा है कलंदर लाल शहबाज,
2: उसी खित्ते की बनी है आवाज,
1: जीए एफएम नेटवर्क,
2: सिंध की आवाज।

0: मोरे पिया पीर से जुम्मा रात 9 बजे सिर्फ ग्रीन एंटरटेनमेंट पर।
1: हक सच जो आवाज, गीत संगीत जो आवाज, जे हैदराबाद मटियारी एफएम 91.6 सिंध जो आवाज, उधरदा रहो उधरदा रहो।
2: सुबह की चाय या ट्रैफिक का जाम, हर पल फन जी एफ एम, बदलती लाइफ की ट्रेजेडी।

जनाब ये तो कुछ इन्फो जो कि मैंने आपसे शेयर की है, इसलिए रीजन सिर्फ और सिर्फ ये है कि आपको आगही हो और आप इसका अपने खानों में इस्तेमाल करें और इसे मुफीद हो यानी फायदा उठा सकें। कुदरत की पेश करदा एक बहुत ही बेशकीमत नेमत है ये, और आपके किचन में लाजिम व मलजूम होना है इसका मौजूद होना। अक्सर कहती हैं गुम नहीं थी मैं, तबीयत ठीक नहीं थी, अपनी ख्याल रखिए हेल्थ का अक्सर, और अब तो अल्लाह पाक का शुक्र है अच्छी बात है कि आपकी तबीयत एकदम ठीक हो गई है। अगर फ्रेंड का दिमाग हो तो रीसेट करूंगी, बहुत चलता है। ओके थैंक यू अक्सर।

और ये कि मैं सोच रही थी कि आज मैं आपको सेगमेंट रिवर्स गियर में एक बहुत ही प्यारा सा गीत सुनाऊंगी। इससे पहले मैंने आई थिंक ये वाला सॉन्ग प्ले नहीं किया है, तो ये वाला गीत जो है बहुत ही प्यारी पसे पर्दा फीमेल सिंगर यानी पसे पर्दा गुलुकारा, और गुलुकारा को आप नसीबो लाल के नाम से जानते हैं। प्यारा सा सॉन्ग, प्यारा सा गीत आप सबके लिए, आपने एंजॉय करना है इस ट्रैक को। ट्रैक के बाद होगा एक छोटा सा ब्रेक, ब्रेक के बाद हम अपने प्रोग्राम के नेक्स्ट सेगमेंट में आपको शामिल प्रोग्राम करेंगे। स्टे विद अस एंड स्टे ट्यून जी एफ एम 88 नेटवर्क।

0: बुलेटिन हर पहर जिंदगी की लहर GFM 88
1: अलविदा
0: फकीरी डेक्स ऑइंटमेंट के साथ।
1: जी हाँ,
0: फकीरी मरहम बनाने वालों की फखरियाँ पेशकश
1: फकीरी डेक्स ऑइंटमेंट।
0: ये ऑइंटमेंट
1: मुतासरा जगह पर आसानी से जज्ब होकर
0: दर्द, सोजिश
1: और अकड़न से आराम पहुँचाने में मदद देता है।
0: आसाबी दर्द, जोड़ों का दर्द,
1: गर्दन और कमर की तकलीफ,
0: पट्ठों के खिंचाव, मोच,
1: चोट, पुराने जख्मों के दर्द
0: और जल्दी जलन में मुफीद।
1: मुतासरा जगह पर दिन में 2 से 3 मर्तबा नरमी से लगाएं और सुकून का एहसास पाएं।
0: फकीरी डेक्स ऑइंटमेंट,
1: तेज आराम, मुआसर हिफाजत और काबिले एतमाद मयार।
0: हर अच्छे स्टोर से नाम लेकर तलब कीजिए।
2: खूबसूरती का असल राज सिर्फ वी स्किन ब्यूटी क्रीम। इसमें मौजूद वाइट डस्ट स्पॉट्स को करे फेड और दे कुदरती असली ग्लो। डी स्किन ब्यूटी क्रीम, असली ग्लो हर दिन का शो।
3: जिस धरती से जुड़ा है कलंदर लाल शहबाज,
4: उसी खित्ते की बनी है आवाज।
3: जिए

हक सच जो आवाज, गीत संगीत जो आवाज, ये हैदराबाद मटियारी FM 91.6 सिंध जो आवाज, उधर दा रहो।

0: आज उसी खत्ते की बनी है आवाज। GAFM नेटवर्क सिंध की आवाज।
1: गीत संगीत जो आवाज। GA हैदराबाद मटियारी FM 91.6 उदंदा।

0: जिस धरती से जुड़ा है कलंदर लाल शहबाज,
1: उसी खित्ते की बनी है आवाज।
0: जीए FM नेटवर्क,
1: सिंध की आवाज।

0: देखिए ड्रामा सीरियल मोहब्बत और महंगाई रोजाना रात 7 बजे सिर्फ ग्रीन एंटरटेनमेंट पर।
1: हक सच जो आवाज, गीत संगीत जो आवाज, जीए हैदराबाद मटियारी FM 91.6 सिंध जो आवाज, बुदंदा रहो।

0: जिस धरती से जुड़ा है कलंदर लाल शहबाज,
1: उसी खित्ते की बनी है आवाज।
0: जीए एफएम नेटवर्क,
1: सिंध की आवाज।

0: देखिए रासे उल्फत 7 अप्रैल से मंगल की रात 8 बजे सिर्फ जियो पर।
1: यार ही गोडन जो सूर है चेल जो सूर तो मुझे जान ही करी छड़िया है। हलण वेहण हर कम दुखियो लगे तो।
2: तपोई छा अन्या तई फकीरी एनल जैसे क्रीम इस्तेमाल न कई थई?
1: न यार, छा वाकई फायदो करे थी?
2: बिल्कुल अदा, कुदरती जजन सा तैयार कैल फकीरी एनल जैसे क्रीम मुतासिर हंदते जल्दी जजब थी। सूर सोडिय जिस्म जी नसन जी छिक आई अकराहट मां आराम पहुंचाने में मदद करे थी। चेल जो सूर हुजे, गोरन जो सूर, कंध आई कुलन जी तकलीफ या वर्जिश का पोए छिक हर हालत में बेहतरीन साथी फकीरी एनल्जेसिक क्रीम
1: इस्तेमाल किए
2: को मुतासिर हंदते डीए में 3-4 भेरा नरमी सा लगाए आई आराम जो एहसास वठ आई बुध जेकरे उमरे या हजते वनन जो इरादो अथई त फकीरी एनल्जेसिक क्रीम जरूर पाण सा गड खणी वंजा।
1: वाह, पोए अजी वठींदस।
2: फकीरी एनल्जेसिक क्रीम अडू ही पांजे वेजे मेडिकल स्टोर ता नालो वठी खरीद करयो।
3: हक सच जो आवाज, गीत संगीत जो आवाज, जे हैदराबाद मटियारी एफएम 91.6 सिंध जो आवाज, बुधदार रहो।
4: सुबह की चाय या ट्रैफिक का जाम, हर पल फन जीएफएम बदलती लाइफ की ट्रेजेडी।
5: yeah!

देखिए रंग महल रोजाना रात 9 बजे सिर्फ जियो पर। हक सच जो आवाज, गीत संगीत जो आवाज, जिए हैदराबाद मटियारी FM 91.6 सिंध जो आवाज, उदंदा रहो।

0: ट्रक से बिस्मिल जल्द आ रहा है।
1: हक सच जो आवाज, गीत संगीत जो आवाज, ये हैदराबाद मटियारी FM 91.6 सिंध जो आवाज, उधर ना रहो।
2: सुबह की चाय या ट्रैफिक का जाम, हर पल फन GFM बदलती लाइफ की ट्रेजेडी।

0: जिस धरती से जुड़ा है कलंदर लाल शहबाज,
1: उसी खित्ते की बनी है आवाज।
0: जीए FM नेटवर्क,
1: सिंध की आवाज़।

0: देखिए पागल खाना पीर से जुमेरात रात 9 बजे सिर्फ ग्रीन एंटरटेनमेंट पर।
1: हक सच जो आवाज, गीत संगीत जो आवाज, जी हैदराबाद मटियारी FM 91.6 सिंध जो आवाज, उधर दा रहो।
2: सुबह की चाय या ट्रैफिक का जाम, हर पल फन, GFM बदलती लाइफ की ट्रेजेडी।
3: yeah!

0: जिस धरती से जुड़ा है कलंदर लाल शहबाज,
1: उसी खित्ते की बनी है आवाज।
0: जीए FM नेटवर्क,
1: सिंध की आवाज़।

0: क्योंकि मैं ग्रीन हूं।
1: हक सच जो आवाज, गीत संगीत जो आवाज, ये हैदराबाद मटियारी FM 91.6 सिंध जो आवाज, बदलता रहो।

0: देखिए नया ड्रामा सीरियल शिकार 4 नवंबर से हफ्ता और इतवार रात 7 बजे
1: क्योंकि मैं ग्रीन हूँ।
2: हक सच जो आवाज गीत संगीत जो आवाज जी हैदराबाद मटियारी FM 91.6 सिंध जो आवाज उतरदा रहो उतरदा रहो।
3: सुबह की चाय या ट्रैफिक का जाम हर पल फन GFM बदलती लाइफ की ट्रेजेडी
4: yeah!

0: जिस धरती से जुड़ा है कलंदर लाल शहबाज,
1: उसी खित्ते की बनी है आवाज।
0: जीए FM नेटवर्क,
1: सिंध की आवाज़।

0: ताज़गी सां गॾु वाइट एश ब्यूटी क्रीम ग्लोइंग स्किन जो राज अ प्रोडक्ट बाय बायोकॉन इंटरनेशनल पाकिस्तान
1: हक सच जो आवाज गीत संगीत जो आवाज जे हैदराबाद मटियारी एफएम 91.6 सिंध जो आवाज बुधंदा रहो
2: सुबह की चाय या ट्रैफिक का जाम हर पल फन जीएफएम बदलती लाइफ की ट्रेजेडी
3: yeah!

0: जिस धरती से जुड़ा है कलंदर लाल शहबाज,
1: उसी खित्ते की बनी है आवाज।
0: जीए FM नेटवर्क,
1: सिंध की आवाज।

0: देखिए नया ड्रामा सीरियल स्टैंड अप गर्ल 21 दिसंबर से जुमेरात और जुम्मा रात 8 बजे।
1: क्योंकि मैं ग्रीन हूँ।
2: हक सच जो आवाज, गीत संगीत जो आवाज, जीए हैदराबाद मटियारी FM 91.6 सिंध जो आवाज, बुदंदा रहो।

0: जिस धरती से जुड़ा है कलंदर लाल शहबाज,
1: उसी खित्ते की बनी है आवाज।
0: GAFM नेटवर्क,
1: सिंध की आवाज।

0: जीवर। हक सच जो आवाज, गीत संगीत जो आवाज, जीए हैदराबाद मटियारी FM 91.6 सिंध जो आवाज, उधर रहो उधर रहो।
1: सुबह की चाय या ट्रैफिक का जाम, हर पल फन जीएफएम, बदलती लाइफ की ट्रेजेडी।
2: Yeah!

0: फकीरी नीम प्रिकली हीट सोप जल्दी इन्फेक्शन से बचाव का बेहतरीन जरिया है।
1: फकीरी नीम प्रिकली हीट सोप
0: जल्दी एलर्जी और खारिश के लिए मुफीद है।
1: फकीरी नीम प्रिकली हीट सोप
0: जुड़ियों चायों कील महासों और गर्मी दानों से हिफाजत के लिए।
1: फकीरी नीम प्रिकली हीट सोप गर्मियों में दे ठंडक का बेहतरीन एहसास, हर रोज कुदरती निखार।
0: फकीरी नीम प्रिकली हीट सोप
1: जिल्द को गहराई से साफ करने, जरासीम से तहफ़ुज़ फराम करने और गर्मी की वजह से होने वाली घुंघरियों, खारिश और बदबू को कम करने में मदद देता है। फकीरी नीम प्रिकली हीट सोप
0: हर अच्छे स्टोर से नाम लेकर तलब कीजिए।

0: क्योंकि मैं ग्रीन हूँ।
1: हक सच जो आवाज गीत संगीत जो ये हैदराबाद मटियारी FM 91.6 सिंध जो आवाज उधर उधर।
2: सुबह की चाय या ट्रैफिक का जाम, हर पल फन GFM बदलती लाइफ की ट्रेजेडी।
3: Yeah!

0: जिस धरती से जुड़ा है कलंदर लाल शहबाज,
1: उसी खित्ते की बनी है आवाज।
0: जीए FM नेटवर्क,
1: सिंध की आवाज़।

0: यकीन हो।
1: हक सच जो आवाज, गीत संगीत जो आवाज, जीए हैदराबाद मटियारी एफएम 91.6, सिंध जो आवाज, बुदंदा रहो।
2: जिस धरती से जुड़ा है कलंदर लाल शहबाज,
3: उसी खित्ते की बनी है आवाज,
2: जीए एफएम नेटवर्क,
3: सिंध की आवाज।

0: अब आप सुनेंगे GAFM नेटवर्क पर KTN न्यूज।
1: आजाद कश्मीर जा मानू पुरानी पगार ते कम कर लाए तैयार ना आजाद कश्मीर जो एक पहले वजीर हुए जो हर फोरम से तवाजी नुमाइंदगी करे कश्मीर के मानून के NFC के फोरम में भी डिसण चाहिया तो हाने कश्मीरन जो फैसलो पंजाब या सिंध न पर कश्मीर पान कंदो पीपल्स पार्टी के चेयरमैन बिलावल भुट्टो जरदारी जो पीरपुर आजाद कश्मीर में चूंड जलसे के खिताब बिलावल भुट्टो चयो त कुछ माण्हुनि जे ग़लतियुनि जी सज़ा सॼे कश्मीर खे न मिलणु घुर्जे 14 ॾींहनि ताईं आज़ाद कश्मीर में इंटरनेट बंदि करणु बदतरीन सज़ा आहे हू चाहे थो रोडनि ते एहतजाज बदिरां आज़ाद कश्मीर जे माण्हुनि जी नुमाइंदगी हर फोरम ते थिए तव्हां फैसलो कंदड़ केर थींदा आहियो त कश्मीरी केर आहिनि काल्ह हिकु पार्टी जे क़ाइदे ते ख़िताब कयो पर अफ़सोस आहे त नगोणे वज़ीर आज़म न वरी वज़ीर आला पंजाब पंहिंजे वज़ीर जे बयान जी मज़म्मत कई।

0: देखिए यारे मन जुम्मा से इतवार रात 7 बजे सिर्फ क्रीन एंटरटेनमेंट पर।
1: हक सच जो आवाज, गीत संगीत जो आवाज, जीए हैदराबाद मटियारी FM 91.6 सिंध जो आवाज, उधर ना रहो।

0: जिस धरती से जुड़ा है कलंदर लाल शहबाज,
1: उसी खित्ते की बनी है आवाज।
0: जीए FM नेटवर्क,
1: सिंध की आवाज़।

हक सच जो आवाज, गीत संगीत जो आवाज, ये हैदराबाद मटियारी FM 91.6 सिंध जो आवाज, उधरदा रहो उधरदा रहो। हक सच जो आवाज, गीत संगीत जो आवाज, ये हैदराबाद मटियारी FM 91.6 सिंध जो आवाज, उधरदा रहो।

0: क्योंकि मैं ग्रीन हूं।
1: हक सच जो आवाज, गीत संगीत जो आवाज, जे हैदराबाद मटियारी एफएम 91.6, सिंध जो आवाज, उधंदा रहो, उधंदा रहो।
2: सुबह की चाय या ट्रैफिक का जाम, हर पल फन, जी एफ एम बदलती लाइफ की ट्रेजेडी।
3: yeah!

0: खुद को जीन।
1: खूबसूरती जो असल राज सिर्फ डी स्किन ब्यूटी क्रीम हिन में मौजूद विटामिन ई बीड्स ऐं जदीद माइक्रो बीड्स फार्मूलो अवां जी स्किन के बनाए निखरी ऐं चमकदार सिर्फ बिन डीहन में डार्क स्पॉट्स के करे खत्म ऐं डीए कुदरती असली ग्लो डी स्किन ब्यूटी क्रीम असली ग्लो हर डीहन जो शो अ प्रोडक्ट बाय बायोकॉन इंटरनेशनल पाकिस्तान।
2: यार कुछ डीहन का चेल जो सूर जोड़न जी तकलीफ आया साबी दर्द इतरो वधी वियो आहे जो हलन फिरन भी दुखियो लगे थो
3: तो पोइ तू फकीरी डेक्स ऑइंटमेंट इस्तेमाल छो नथो करी
2: इहा वाकई फायदे वारी आहे छा
3: बिल्कुल फकीरी डेक्स मरम मुतासिर थियल हंध ते आसानी सा जज़ब थी सूर आई सोडियम आराम पहुँचाण में मदद दे थी
2: सिर्फ चेल ऐ सूर लाए
3: न दा असाबन जो सूर जोड़न जो सूर कंध आई चेल जी तकलीफ सट धक लगन पुराने जख्म जे सूर आई चमड़ी जे जलन लाए भी फायदेमंद आहे
2: इस्तेमाल किए कजे
3: मुतासिर थियल हंध ते डीह में ब खां टे भेरा नरमी सा लगायो आई आराम जो एहसास हासिल करियो जी हाँ फकीरी डेक्स ऑइंटमेंट सूर खां आराम हर रोज हर कदम अड़ी वेजे स्टोर ता नालो वठी खरीद करियो फकीरी डेक्स ऑइंटमेंट
4: खिलाफ शर्त अना था वो ख्वाब में भी मिले मैं नींद नींद को तरसा मगर नहीं सोया खिलाफ मौसम दिल है कि थम गई बारिश खिलाफ हुरमत गम।

0: जिस धरती से जुड़ा है कलंदर लाल शहबाज,
1: उसी खित्ते की बनी है आवाज।
0: जीए FM नेटवर्क,
1: सिंध की आवाज़।

हक सच जो आवाज, गीत संगीत जो आवाज, जे हैदराबाद मटियारी FM 91.6 सिंध जो आवाज, उधर ना रहो, उधर ना

0: हक सच जो आवाज, गीत संगीत जो आवाज, जे हैदराबाद मटियारी FM 91.6, सिंध जो आवाज, उधर दा रहो।
1: सुबह की चाय या ट्रैफिक का जाम, हर पल फन, GFM बदलती लाइफ की ट्रेजेडी।

0: जिस धरती से जुड़ा है कलंदर लाल शहबाज,
1: उसी खित्ते की बनी है आवाज।
0: जीए एफएम नेटवर्क,
1: सिंध की आवाज़।

0: हक सच जो आवाज, गीत संगीत जो आवाज, जीए हैदराबाद मटियारी एफएम 91.6, सिंध जो आवाज, बुदंदा रहो।
1: जिस धरती से जुड़ा है कलंदर लाल शहबाज,
2: उसी खित्ते की बनी है आवाज,
1: जीए एफएम नेटवर्क,
2: सिंध की आवाज।

0: देखिए नया ड्रामा सीरियल हमनवा बहुत जल्द सिर्फ ग्रीन एंटरटेनमेंट पर।
1: हक सच जो आवाज, गीत संगीत जो आवाज, जे हैदराबाद मटियारी FM 91.6 सिंध जो आवाज, उधरदा रहो।
2: अब आप सुनेंगे GAFM नेटवर्क पर KTN न्यूज।
3: इलेक्शन कमेटी के सटे लगायल धरण सबब मुख्तलिफ इलाकन ईंदड़ वेंदड़ ट्रैफिक मुअत्तल। कश्मोर में डेरा मोड़ उबाउड़ में कमू शहीद वट भी धरण जो ऐलान थियल। फ्री एक्शन कमेटी जो चवण आए तो 27 डे घुसन बावजूद मुतालबा न तस्लीम किया वा तो पुलिस 3 डीन की मोहलत वरती। 5 डी थी व्या पर अं एक भी बार बाजाब न थो। मजबूर थी रोड बंद क्या प्रिया कुमारी बेन बार बाजाबी ती धरना जारी रहंदा। आजाद कश्मीर जा मानू पुरानी पगार से कम करने लाय तैयार ना हैं। आजाद कश्मीर जो एक पदई वजीर हुए जो हर फोरम से तवाजी नुमाइंदगी करे। कश्मीर जे मानून के नफसी जे फोरम में भी दिसन चाहिया तो हाने कश्मीरियन जो फैसलो पंजाब या सिंध पर कश्मीर पान कंदो। पीपल्स पार्टी जे चेयरमैन बिलावल भुट्टो जरदारी जो मीरपुर आजाद कश्मीर में चूंड जलसे के खिताब। बिलावल भुट्टो चयो त कुदरत गलतियन की सजा सजे कश्मीर के न मिलन घुर्जे। 14 डीन ताई आजाद कश्मीर में इंटरनेट बंद करजाज बदरा तमाम केयर कल एक पार्टी के कायद से खिताब कर पर अफसोस है त न अगोड़ा पंजाब
4: सोलर बैटरी से डायरेक्ट।
2: आप सुन रहे थे GAFM नेटवर्क पर KTN न्यूज।
1: हक सच जो आवाज, गीत संगीत जो आवाज, जे हैदराबाद मटियारी FM 91.6 सिंध जो आवाज, उधरदा रहो।

हक सच जो आवाज, गीत संगीत जो आवाज, जे हैदराबाद मटियारी FM 91.6 सिंध जो आवाज, बुधंदा रहो, बुधंदा।

0: जिस धरती से जुड़ा है कलंदर लाल शहबाज,
1: उसी खित्ते की बनी है आवाज।
0: जीए FM नेटवर्क,
1: सिंध की आवाज़।

0: जिस धरती से जुड़ा है कलंदर लाल शहबाज,
1: उसी खित्ते की बनी है आवाज।
0: GA FM नेटवर्क,
1: सिंध की आवाज।

0: पागल।
1: देखिए नया ड्रामा सीरियल पागलखाना 29 जनवरी से रात 9 बजे सिर्फ ग्रीन एंटरटेनमेंट पर।
2: यार कुछ डियन खां चेल जो सूर जोड़न जी तकलीफ अया साबी दर्द इतरो वधी वियो आहे जो हलन फिरन भी दुखियो लगे थो।
3: त पोई तू फकीरी डेक्स ऑइंटमेंट इस्तेमाल छो नथो करी?
2: इहा वाकई फायदे वारी आहे छा?
3: बिल्कुल, फकीरी डेक्स मरम मुतासिर थियल हंध ते आसानी सां जज़्ब थी सूर ऐं सोडियम आराम पहुचाइण में मदद ॾिए थी।
2: सिर्फ चेल ऐं सूर लाइ
3: न दा, असाबन जो सूर, जोड़न जो सूर, कंध ऐं चेल जी तकलीफ़, सट, धक लॻण, पुराणनि ज़ख्म जे सूर ऐं चमड़ीअ जे जलन लाइ बि फ़ाइदेमंद आहे।
2: इस्तेमाल कीअं कजे?
3: मुतासिर थियल हंध ते ॾींहं में 2-3 भेरा नरमी सां लॻायो ऐं आराम जो अहसास हासिल करियो। जी हाँ, फकीरी डेक्स ऑइंटमेंट, सूर खां आराम। हर रोज
4: सच जो आवाज़, गीत संगीत जो आवाज़, जी हैदराबाद मटिया जो।
5: हाय या ट्रैफिक का जाम, हर पल फन, GFM बदलती लाइफ की ट्रेजेडी।
6: Yeah!

हक सच जो आवाज, गीत संगीत जो आवाज, जे हैदराबाद मटियारी FM 91.6 सिंध जो आवाज, ॿुधंदा रहो।

0: हक सच जो आवाज, गीत संगीत जो आवाज, ये हैदराबाद मटियारी FM 91.6 सिंध जो आवाज, उधरदा रहो उधरदा रहो।
1: सुबह की चाय या ट्रैफिक का जाम, हर पल फन GFM बदलती लाइफ की ट्रेजेडी।

0: जिस धरती से जुड़ा है कलंदर लाल शहबाज,
1: उसी खित्ते की बनी है आवाज।
0: जीए एफएम नेटवर्क,
1: सिंध की आवाज।

0: फकीरी नीम प्रिकली हीट सोप जल्दी इन्फेक्शन से बचाव का बेहतरीन जरिया है।
1: फकीरी नीम प्रिकली हीट सोप
0: जल्दी एलर्जी और खारिश के लिए मुफीद है।
1: फकीरी नीम प्रिकली हीट सोप
0: जुड़ियों, छाइयों, कील महासों और गर्मी दानों से हिफाजत के लिए।
1: फकीरी

0: नीम प्रिकली हीट सोप, गर्मियों में दे ठंडक का बेहतरीन एहसास, हर रोज कुदरती निखार।
1: फकीरी नीम प्रिकली हीट सोप
0: जिल्द को गहराई से साफ करने, जरासीम से तहफ़ फराम करने और गर्मी की वजह से होने वाली घुमरियों, खारिश और बदबू को कम करने में मदद देता है। फकीरी प्रिकली हीट सोप
1: हर अच्छा।
2: अब आप सुनेंगे GAFM नेटवर्क पर KTN न्यूज।
3: पुलिस बारन जी बाजा भी लाए को कदम नाए क्यों बारा बाजा कराड़ बदरा तला आसरा देना पे वन बारन जी बाजा भी तई धरना जारी रहा।

0: असांजी बि न्याणी आहे, तव्हां इहो नतीजो त कढो न। असां राजू में बि राज़ी हूं, असां हर ॻाल्हि में राज़ी हूं, माफ़ी घुरूं त असां माफ़ी ॾियण लाइ बि तयारु हूं, पर मूंखे न्याणी त मिले न। कम से कम हिकिड़ो डुख आहे, हिकिड़ो सूर त वञे न, असांजे दिलि मो त वञे न। हिकिड़ा ॿार वेंदा आहिनि गुम थी, हुनजी काई ख़बर न पवंदी आहे त ॿार काॾे विया, केरु खणी वियो। असां हुन त एतिराफ़ कयो आहे, उहो बि अमीरनि सां एतिराफ़ कयो अथनि, पुलिस आफ़िसर सां एतिराफ़ कयो अथनि, ॿियो इन खां वधीक प्रूफ सबूत कहिड़ो हुजे। हिन एस एस पी इहा ॻाल्हि कई त मां इहो मसइलो टारगेट आहे, इहो मां मसइलो हल कंदुमि। इन में कुझु ॾींहं लॻंदा, अमल कयां त नतीजो निकिरी ईंदो। उन सां गॾु आई जी सपोर्ट हुजे, डी आई जी सपोर्ट हुजे, रुकावट हाणे हुया न हुया, हाणे खसरी ख़बर पहुची वञे त हिन वक़्तु रुकावट आहिनि या न आहिनि। पुलिस खे पंहिंजे हिसाब सां कमु करणु छॾियऊं ऐं पुलिस सचाई कई त नतीजो निकिरी ईंदो।
1: सुरन जे इलाइक़े घड़ी हसन मां 19 साल खे अगवा थियल 4 वरी जी फसीला सरकी पुलिस खे भेरो ॿीहर यादि अची वई। एस एस पी सां मुलाक़ात कंदड़ फसीला जे वालिद अब्दुल रज़ाक सरकी के टी न्यूज़ सां ॻाल्हाईंदे चयो आहे त पुलिस खे जवाबदारनि जा समूरा तफ़सीली न आहिनि। हू पोइ जवाबदारनि ॾोह जो बि एतिराफ़ कयो हो। ॿियो कहिड़ो सबूत घुर्जे? पुलिस सचाई सां जांच कई त निगरी जो पतो पइजी वेंदो। इहा बि ख़बर पइजी वेंदी त फसीला जी बाज़ियाती में सरदार रंडक आहिनि या न।

0: जब दिमागी नॉर्मल ना हो तो फिर कुछ नॉर्मल नहीं होता, और यही बात इसको समझ में नहीं आ रही।
1: मेरी बच्चियों के खुशियों को नजर ना लगे किसी की, बहुत दुख देखे इन्होंने 2 सालों में।
2: हो गई बर्बाद में, लग गई मेरी खुशियों को आग।

0: के भाई को मारा है तुमने, अब उस लड़की की खातिर हमें मार दो, मार दो हमें।
1: तुम नहीं जानती कि वो तुम्हारी जिंदगी कैसे बर्बाद कर सकता है। सारे को तो हम खो चुके हैं, तुम्हें नहीं खोना चाहते।
2: इस लड़की को ढूंढने में उसका सुकून है, जो लड़की उसको नहीं मिलेगी खुद ही सुकून आ जाएगा उसे।

हक सच जो आवाज, गीत संगीत जो आवाज, जे हैदराबाद मटियारी FM 91.6 सिंध जो आवाज, ॿुधंदा रहो।

0: हक सच जो आवाज, गीत संगीत जो आवाज, ये हैदराबाद मटियारी FM 91.6 सिंध जो आवाज, उधरदा रहो उधरदा रहो।
1: सुबह की चाय या ट्रैफिक का जाम, हर पल फन GFM बदलती लाइफ की ट्रेजेडी।

0: जिस धरती से जुड़ा है कलंदर लाल शहबाज,
1: उसी खित्ते की बनी है आवाज।
0: जीए एफएम नेटवर्क,
1: सिंध की आवाज़।

0: तो मेरा फैन।
1: वाइट एज ब्यूटी क्रीम 5-डे ब्यूटी प्लान के साथ एलोवेरा, विटामिन और एवोकाडो की भरपूर खूबियां, जिसके मिनरल्स स्किन में

हक सच जो आवाज, गीत संगीत जो आवाज, ये हैदराबाद मटियारी FM 91.6 सिंध जो आवाज, बुदंदा रहो।

0: जिस धरती से जुड़ा है कलंदर लाल शहबाज,
1: उसी खित्ते की बनी है आवाज।
0: जीए FM नेटवर्क,
1: सिंध की आवाज़।

0: सीरियल ग्रे 4 दिसंबर से पीर और मंगल रात 9 बजे।
1: जो आवाज गीत संगीत जी हैदराबाद मटियारी उधर आ रहा हूँ।

0: ये भी तो जुल्म ही हुआ ना कि इंसान को दिल में कोई और बसता हो और तो किसी और को उम्मीद दिलाते।
1: मैंने हमेशा आपके लफ्जों पे इस्तेमाल किया, कभी भी आपके दिल में झांक कर नहीं देखा कि मोहब्बत के जिस इजहार में आपने मुझे बांधा था वो तो कब का टूट

0: पर्दा पर्दा पर्दा, जब से रिश्ता जोड़ा है इसने तो मेरी जिंदगी अजाब बना के रखती है।
1: बस कर दो दुर्दाना, बस कर दो प्लीज।
2: खाओ मेरी कसम, तुम इसके बारे में नहीं सोचोगे।

0: तुम्हें बर्बाद कर देगी।
1: अगर मुझे ना मिली तो बर्बाद हो जाऊंगा।
2: उस बेचारी का कसूर यह है कि वो शैतानों की बस्ती में अपने लिए इंसान तलाश कर रही थी।
3: रूह को चलने की है।
4: हक हक सच जो आवाज, गीत संगीत जो आवाज।
1: मैं उम्र भर के लिए आपका साथ चाहता हूँ।
5: यानी फैसला आपने अल्लाह

0: ये भी तो जुल्म ही हुआ ना, इंसान के दिल में कोई और बसता हो और तो किसी और को उम्मीद दिलाता।
1: मैंने हमेशा

0: पर्दा पर्दा पर्दा, जब से रिश्ता जोड़ा है इसने तो मेरी जिंदगी अजाब बना के रखती है।
1: बस कर दो दुर्दाना, बस कर दो प्लीज।
2: खाओ मेरी कसम, तुम उसके बारे में नहीं सोचोगे।

0: ये बर्बाद कर देगी।
1: अगर मुझे ना मिली तो बर्बाद हो जाऊंगा।
2: उस बेचारी का कसूर ये है कि वो शैतानों की बस्ती में अपने लिए इंसान तलाश कर रही थी।
3: बच्ची की रूह को छलने की है, उसके पाकीज़ा किरदार पर खींचड़ उछा लिया तुम लोगों ने। अल्लाह ताला तुम लोगों को कभी माफ नहीं करेगा, देखना।
0: मैं ना फिर उनके सामने तमाशा बन गई मामा।
4: अच्छा अच्छा अच्छा।

0: से तुम्हारे लहजे की नफरत मेरी जान ले लेगी।
1: और आपकी बेवफाई मेरी जान ले चुकी है।
0: आज के बाद इस घर की तरफ नजर उठा के मत देखना गेस्ट हाउस। एक बार कह देती कि तुम्हें इस घर से नहीं जाना।
1: जब कोई मोहब्बत करने वाला जिंदगी से जाने का हुक्म देते तो हुक्म मान लेना चाहिए।

0: देखिए मेरा रब वारिस 7 मार्च से जुमेरात की रात 8 बजे सिर्फ जियो पर।
1: हक सच जो आवाज, गीत संगीत जो आवाज, जिए हैदराबाद मटियारी FM 91.6, सिंध जो आवाज, बदलता रहो।
2: सुबह की चाय या ट्रैफिक का जाम, हर पल फन जी एफ एम, बदलती लाइफ की ट्रेजेडी।
3: yeah!

0: हक सच जो आवाज, गीत संगीत जो आवाज, जे हैदराबाद मटियारी FM 91.6, सिंध जो आवाज।
1: सुबह की चाय या ट्रैफिक का जाम, हर पल फन, GFM बदलती लाइफ की ट्रेजेडी।
2: yeah!

0: जिस धरती से जुड़ा है कलंदर लाल शहबाज,
1: उसी खित्ते की बनी है आवाज।
0: जीए एफएम नेटवर्क,
1: सिंध की आवाज़।

0: अब आप सुनेंगे GAFM नेटवर्क पर KTN न्यूज।
1: हैदराबाद में वाधू वाह कौमी शाहरा ते धरने सबब गाड़ियों जो कतारू लगी वही हूं। सियासी समाजी अगुवाण कारकुन की शिरकत मेहड़ में भी धरणो हणी इंडस हाईवे ब्लॉक थे वो। पुलिस से गालियों बाद एहतजाज खत्म। फ्री एक्शन कमेटी जो चवण आए तो एहतजाज के 27 डी गुजरण बावजूद पुलिस वारन की बाजियाब लाइ को कदम न कयो। बार बाजियाब कर बदला ठल आसरा दिना पा वन बार बाजियाबी ताई धरना जारी रहंदा।
2: जुम्मेदार जो नोट दी जो नोट असा।

आज़ाद कश्मीर जा माण्हू पुराणी पघार ते कम करण लाइ तयार आहिनि। आज़ाद कश्मीर जो हिकु परदेही वज़ीर हुजे जेको हर फोरम ते तव्हांजी नुमाइंदगी करे। कश्मीर जे माण्हुनि खे एनएफसी जे फोरम में बि ॾिसण चाहियां थो। हाणे कश्मीरियुनि जो फैसलो पंजाबी असेंबली न पर कश्मीर पाण कंदो। पीपल्स पार्टी जे चेयरमैन बिलावल भुट्टो सरदारी चयो मीरपुर आज़ाद कश्मीर में चूंड जलसे खे ख़िताब। बिलावल भुट्टो चयो त कुझ माण्हुनि जे ग़लतियुनि जी सज़ा सॼे कश्मीर खे न मिलणु घुर्जे। 14 ॾींहनि ताईं आज़ाद कश्मीर में इंटरनेट बंदि करणु बदतरीन सज़ा आहे। हू चाहे थो रोडनि ते एहतजाज बदिरां आज़ाद कश्मीर जे माण्हुनि जी नुमाइंदगी हर फोरम ते थिए। तव्हां फैसलो कंदड़ केर थींदा आहियो त कश्मीरी केर आहिनि? काल्ह हिकु पार्टी जे क़ाइद हिते ख़िताब कयो पर अफ़सोस आहे त न अॻूणे वज़ीर आज़म ऐं न वरी वज़ीर आला पंजाब पंहिंजे वज़ीर जे बयान जी मज़म्मत कई।

अमरीका खिते में जंग नथो चाहे। वॉशिंगटन गालियन लाइ तैयार है पर तेहरान संजीदा ना है। मनीला में मीडिया से गालाइंदे अमरीकी परे वजीर मार्को रूबियो है आपना हुर्मुज में बहरी जहाजन जो इतफाक कर रहा हूं। ईरान खिते में बदमनी के हथी डेई रो है। ईरान के अपना हुर्मुज से कंट्रोल की इजाजत नथी डेई सकते। ईरान से तकरार से सफारती हल चाहूं था। यूक्रेन जंग के खात्मे लाए अमरीका अहम किरदार अदा कर रो है। आसियान इजलास में शिरकत लाए फिलिपाइन के शहर मनीला पौतल लाए वजीर आजम साकार की रूसी परदेही वजीर से मुलाकात। द्विपक्षीय लागापन समेत खिते की सूरतहाल से गालू। बिन्हीं अगवाणन जो पाक रूस लागापन के मजबूत बनाने खिते की सूरतहाल से राबतन में रहने तफाक़।

0: अमेरिका इरान से यारहें डी भी हमला ईरानी शहर तहरान तकरीर सवेरे कई बेन समुद्री इलाकन निशानों बढ़ाए हुए अमरीकी सेंटका मूजिब ताजन हमलन जो मकसद ईरान के बहरी जहाजन खिलाफ सलाहियतन के कमजोर करण हो ईरानी फौज जा भी जवाब में अमरीकी खत्े में मौजूद अमरीकी अड्डन से हमला पासर इनकलाब मूजिब उड़तन ए बहरेन में अमरीकी फौजी अड्डन के ड्रोन जरिए निशानों बढ़ाए वो है जैसे नतीजे में अमरीकी फौज को वो नुकसान थो है। पाकिस्तान के दौरे से मौजूद
1: आप सुन रहे थे GAFM नेटवर्क पर KTN न्यूज।
2: हक सच जो आवाज, गीत संगीत जो आवाज, GA हैदराबाद मटियारी FM 91.6 सिंध जो आवाज, बुदंदा रहो।
3: जिस धरती से जुड़ा है कलंदर लाल शहबाज,
4: उसी खित्ते की बनी है आवाज।
3: GAFM नेटवर्क,
4: सिंध की आवाज।

0: जब दिमाग ही नॉर्मल ना हो तो फिर कुछ नॉर्मल नहीं होता, और यही बात इसको समझ में नहीं आ रही।
1: मेरी बच्चियों के खुशियों को नजर ना लगे किसी की, बहुत दुख देखे इन्होंने दो सालों में।
2: हो गई बर्बाद में, लग गई मेरी खुशियों को आग।

0: के भाई को मारा है तुमने, अब उस लड़की की खातिर हमें मार दो, मार दो हमें।
1: तुम नहीं जानती हो तुम्हारी जिंदगी कैसे बर्बाद कर सकता है। सारे को तो हम खो चुके हैं, तुम्हें नहीं खोना चाहते।
2: इस लड़की को ढूंढने में उसका सुकून है, जो लड़की उसको नहीं मिलेगी खुद ही सुकून आ जाएगा उसे।

0: हक सच जो आवाज, गीत संगीत जो आवाज, जे हैदराबाद मटियारी FM 91.6, सिंध जो आवाज, उधंदा रहो, उधंदा रहो।
1: सुबह की चाय या ट्रैफिक का जाम, हर पल फन, GFM बदलती लाइफ की ट्रेजेडी।

0: हक सच जो आवाज, गीत संगीत जो आवाज, ये हैदराबाद मटियारी FM 91.6 सिंध जो आवाज, उधर रहो उधर।
1: सुबह की चाय या ट्रैफिक का जाम, हर पल फन GFM बदलती लाइफ की ट्रेजेडी।

0: जिस धरती से जुड़ा है कलंदर लाल शहबाज,
1: उसी खित्ते की बनी है आवाज।
0: GA FM नेटवर्क,
1: सिंध की आवाज़।

0: मेरा फैन।
1: वाइट एज ब्यूटी क्रीम 5 डे ब्यूटी प्लान के साथ एलोवेरा विटामिन और एवोकाडो की भरपूर खूबियाँ, जिसके मिनरल्स स्किन में फुली एब्जॉर्ब हो जाए, स्किन को फेयर और फ्रेश बनाए, आपको दे बेताब निखरा निखरा चेहरा। वाइट एज ब्यूटी सोप से मिले चमकता निखार ताजगी के साथ। वाइट एज ब्यूटी क्रीम, ग्लोइंग स्किन का राज, अ प्रोडक्ट ऑफ बायोकॉन इंटरनेशनल।
2: गीत संगीत जो आवाज,
3: सुबह की चाय या ट्रैप, हर पल फन, GFM बदलती लाइफ की ट्रेजेडी।

0: सीरियल ग्रे 4 दिसंबर से पीर और मंगल रात 9 बजे
1: क्योंकि मैं ग्रीन हूं।
2: हक सच जो आवाज गीत संगीत जो आवाज जे हैदराबाद मटियारी FM 91.6 सिंध जो आवाज बुदंदा रहो बुदंदा रहो।
3: सुबह की चाय या ट्रैफिक का जाम हर पल फन GFM बदलती लाइफ की ट्रेजेडी
4: yeah!

0: जिस धरती से जुड़ा है कलंदर लाल शहबाज,
1: उसी खित्ते की बनी है आवाज।
0: जीए FM नेटवर्क,
1: सिंध की आवाज।
2: मोहब्बत का नशा भी ना बहुत अजीब होता है। इंसान इतना मदहोश हो जाता है कि उसे अपने महबूब के सिवा कुछ सुझा ही नहीं देता।

0: पर्दा पर्दा पर्दा, जब से रिश्ता जोड़ा है इसने तो मेरी जिंदगी अजाब बना के रखती है।
1: बस कर दो दुर्दाना, बस कर दो प्लीज।
2: खाबे

0: आगे बर्बाद कर देगी।
1: अगर मुझे ना मिली तो बर्बाद हो जाऊंगा।
2: उस बेचारी का कसूर यह है कि वो शैतानों की बस्ती में अपने लिए इंसान तलाश कर रही थी।
3: बच्ची की रूह को चलने की है, उसके पाकीज़ा किरदार पर खींचड़ उछाली है तुम लोगों ने। अल्लाह ताला तुम लोगों को कभी माफ नहीं करेगा, देखना।
0: मैं ना पैरों के सामने तमाशा बन गई मामा।
3: अच्छा अच्छा अच्छा।

0: आशा तुम्हारे लहजे की नफरत मेरी जान ले लेगी।
1: और आपकी बेवफाई मेरी जान ले चुकी है।
0: आज के बाद इस घर की तरफ नजर उठा के मत देखना। गेट आउट। एक बार कह देती कि तुम्हें इस घर से नहीं जाना।
1: जब कोई मोहब्बत करने वाला जिंदगी से जाने का हुक्म देते तो हुक्म मान लेना चाहिए।

0: देखिए मेरा रब वारिस 7 मार्च से जुमेरात की रात 8 बजे सिर्फ जियो पर।
1: हक सच जो आवाज, गीत संगीत जो आवाज, जिए हैदराबाद मटियारी FM 91.6, सिंध जो आवाज, उधर उधर।
2: सुबह की चाय या ट्रैफिक का जाम, हर पल फन, GFM बदलती लाइफ की ट्रेजेडी।

0: क्योंकि मैं ग्रीन हूं।
1: हक सच जो आवाज, गीत संगीत जो आवाज, ये हैदराबाद मटियारी FM 91.6 सिंध जो आवाज, ॿुधंदा रहो।

0: जिस धरती से जुड़ा है कलंदर लाल शहबाज,
1: उसी खित्ते की बनी है आवाज।
0: जीए FM नेटवर्क,
1: सिंध की आवाज़।

0: हक सच जो आवाज, गीत संगीत जो आवाज, ये हैदराबाद मटियारी FM 91.6 सिंध जो आवाज, उधर दा रहो।
1: सुबह की चाय या ट्रैफिक का जाम, हर पल फन GFM बदलती लाइफ की ट्रेजेडी।
2: ये अपना वाइब सेट है,
3: GFM द बेस्ट है।
2: धमाल की ये
4: अब आप सुनेंगे GFM नेटवर्क पर KTN न्यूज।
5: मारन के वापस कर दो ट्रेन ये पूरा थी लिया। हाने अमन मावरन जो सवाल आए, अमड़न जो सवाल आ, उन जो झोली खाली है ने, आए असा जेसी मावरन के बाहर नथा मिलने, जेसी ताई ही रोड रास्ता सब ब्लॉक हुंदा।
6: चलियो पंजन सारन गांव थी ना नहीं को तो मुझे तरफा काई थी आनी खलापार मारिया पूरी जीआईटी ने मता जीआईटी में धन जेते अमल न रोक रहे वाले ऐसा न पूरा मने इतना जाए कहीं वजह है जो ता प्रिया कुमारी के बाजी आप नथा कराए सको मतलब ता जी हुकूमत ने कहा वो नाकारा थी चुप
7: मासूम बचरा चंद जा गुम लगा पे नहीं तमा उन्हें के गाला भी समझो था
5: जिम्मेदार।

0: सिंबाग हुआ ए गुमतल पंचवी का वधिक बारन जी बाजे पिला सबूरी सिंधे कवाज एक कई वक्त चैन शहर में धरना जारी बबलो बाईपास वट मोबी शारा ते फ्री एक्शन कमेटी के धरने सबब मुख्तलिफ इलाकना ईंदड़ वेंदड़ ट्रैफिक मोटल रांची में टे तले शहरी शिरकत हैदराबाद में वाधू वाह वट कौमी शाहरा ते धरणो लगल गाडियन जो कतारू लगी वयू जाम शहरों में भी इंडस हाईवे ते धरणो हयो वियो ट्रैफिक मुअत्तल मेहड़ में भी उजाला परवीन ए बयन बारन जी बासे पिला हैल धरलो पुलिस की खातिरन ते खत्म धरणन में शरीक अगवाड़न जो चवण आए तो बारन की बाजाबी का सिवाय धरना खत्म न थींदा।
1: असा राजू में भी राजी हूं असा हर गाल में राजी हूं माफी घुरू तो माफी देने लाय भी तैयार हूं पर माखे न्याणी तो मिले न कम से कम एक दुख है एक सूर तो वे ना दिल में तो वे ना बारा वेंदा गुम थी उनकी काई खबर न पवी है तो बार काडे आ केर खड़ी अस एतराफ किया अमीर से एतराफ किया अतन पुलिस ऑफिसर से एतराफ किया अतन इनको प्रूफ सबूत कड़ो हो इन एस एस पी या गाल कई तो मां यो मसलो टारगेट आयो मां मसलो हल कंद इन में कुछ डी लगता अमल कें तो नतीजो निकरी उन आई जी सपोर्ट हो डी आई जी सपोर्ट हो रुकावट हुआ न हुआ हाँ खसरी खबर पोची वही तो इन वक्त रुकावट आयन या ना जो पुलिस के पांच हिसाब से कम कर छ्यों पुलिस सच्चाई कई तो नतीजो निकरी
0: तुलसी इलाके गड़ी हसन मां 19 साल अगवा थियल चार वरियन की फजीला सरकी पुलिस के एक भेरो बीहर याद अची वही एस एस पी से मुलाकात कनर फजीला के वालिद अब्दुल रजाक सरकी केटीए न्यूज से गालाइंदे है तो पुलिस के जवाबदारन जा समूरा तफसील दिना है जवाबदारन ने डोह जो भी एतराफ कयो हो बो कड़ो सबूत घुर्जे पुलिस सच्चाई सरदार रंडक आहिन या ना।

0: बंगाल की रातों और सोचना था ऐसा पुलिस कर्म के लिए दर्द ना हुई फैमिली गुजरे थी कई असा पूरे एहसास गाड़ी की टीम था क्या कल खान की करे पूरी असानी टीम उतरे वे खिलाड़ा जो नेगोशिएट करे थी कई जो वायरस काफी हद तक मुझे लगे तो मुतमन आतमन कदे पहला पुलिस पूरी उन्होंने सपोर्ट कही इंश्योर कही इलाके अड़े पीसफुल इलाके में नी क्रिमिनल एक्टिविटीज में इन्वॉल्व आन वो असो निशान पे आज सस्पेक्ट असा रही सकता पूरी उम्मीद है असन तीन पोची वे
1: खिपरो में फुरमजामत कतल कल नौजवान भेरू कूली के वारिसन जो काल का लाश रखी धरणो जारी एसएसपी शांगड़ धरणे के कुछ मान की सियासत करार दई छो काल नौजवान भेरू कूली के पुर मजामत दौरान कतल किया हो वारिसन जो काल का उमरकोट खिपरो रोड से धरणो जारी कातलन की गिरफ्तारी तई एहतजाज खत्म करण का इनकार एसएसपी शांगड़ शाहनवास अचर है नौजवान कातिल जल्द गिरफ्तार थन्दा कुछ मू धरणो हणाई पैंजे सियासत चमकाए रहा आहिन। परदेही वजीर हुजे जेको हर फोरम ते तवां करे उनके एनएफसी जे फोरम में भी दिसण चाहिया कश्मीर पाण कंदो पीपल्स आजाद कश्मीर चूंड जलसे के खते कमरन घुर्जे चौरानी कश्मीर जे माण्हुनि जी दम ते थिए फैसलो कंदड़ केर थींदा आहियो त हिक पार्टी जे क़ाइद हिते पंहिंजे वसीर जे बयान जी मज़म्मत कई दस रास एक्स शहबाज में भी शरीक थिया बस खिताब कंदे चयो त पाकिस्तान के रोबोटिक्स ए आई जो इलाकाई मर्कज पाइण हुकूमत जो अज़म आहे टेक्नोलॉजी ए खुद मुख्तार सिस्टम्स मुआशी तरक्की लाइ अंटर आहिनि जदीद टेक्नोलॉजी जो इस्तेमाल वक्त की ज़रूरत आहे फील्ड मार्शल की क़यादत में हथियारबंद फौज जदीद टेक्नोलॉजी इख़्तियार कई आहे वफाकी हुकूमत तेल अगन में रोजाने की बुनियाद ते फेरफार खिलाफ एहतजाज कर पेट्रोल पंप मालिकन के मार्जिन वधान जो आसो डेई सुभाणे दिनल हड़ताल जो सड वापस वटाए छो वफाकी वजीर अली परवेज मलिक पेट्रोल पंप्स ऑनर्स ए डीलर्स एसोसिएशन के अगुवाणे से मुलाकात कर सदन मसला बिन हफ्तन में हल करण की खातरी कराई हुकूमती खातरियन ते पेट्रोल पंप मालिकन सुभाणे वाली हड़ताल जो सद वापस वठी छो अली परवेज मलिक रोजाने की बुनियाद ते कीमतन में फेर बाबत बिन हफ्तन का पोए पेट्रोलियम तंजीमन से गड़जानी थी आलमी सतह से तेल जाग घट वध थी रहा है जल्द शफाफ अंदाज में इन्हीं फार्मूला तहत फायदो अवाम के वापस मुंतकिल कर वेंदो।
2: आप सुन रहे थे GAFM नेटवर्क पर KTN न्यूज।
3: हक सच जो आवाज गीत संगीत जो आवाज जीए हैदराबाद मटियारी FM 91.6 सिंध जो आवाज बुधंदा रहो।